जय गुरु भाई बहनों, आप सबको खंडमान स्वागत करो हूँ हमारी आज की परबात की सभा में। आप सभा में रिया हो आपनो सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM माते मो हूँ आपने हाथे आपनी बोनंजली पारेश्वर ने आज वार सोमवार ने तारीख 13 जुलाई 2026 नो ताड़ो है। भाई बहनों में देखी रहा हूँ कि अपने स्टूडियो की घड़ी में परबात ना 6 बजे के ही तब आपने शुरुआत करो परबात की सभा में प्रसारित थवा वाला कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। तो भाई बहनों आज सभा ने शुरुआत करेंगा सप्ती की पहले भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक की जुड़ कार्यक्रम आराधना तक की इन्हें में अपना हम रंगा आज न सुविचार ने हाथे भक्ति में गीत पणस क्रम में अगाड़ी बढ़ेंगा किसान भाई बहनों तक की जुड़ कार्यक्रम खेती बाड़ी आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 6:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट निमो आपनी बूंद अंजलि पारेश्वर ने हाथे एनीस कड़ी में अपने बीजा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगा जेने कहीं बालकनु बालपन एटले कार्यक्रम सच्चा बचपन आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 7 बजे प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर निमो आपनी बूंद अंजलि पारेश्वर ने हाथे एनीस कड़ी में अपने अगाड़ी रुख करेंगा तमारी ने अमारी आवाज कार्यक्रम युवाओं ने आवाज नियाड़ी आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 7:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने कशिश पारेश्वर ने हाथी एनीस कड़ी में अपने अगाड़ी बढ़ेंगा अपने अधिकार कानून नियम तक की जुड़ कार्यक्रम सच्चा स्वराज आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 8 बजे प्रस्तुत करता अंजलि पारेश्वर इटली मुँह ने मारे हाथे रहेगा हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट अनस क्रम में बढ़ते तक अपने रुख करेंगे राजस्थानी गीत तक जुड़ कार्यक्रम लोक संगीत आ कार्यक्रम आप हम शकों का ठीक 8:30 माते श्रोताओं बिजु कार्यक्रम शुरू था का ठीक 9 बजे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य आ कार्यक्रम लेने आवेगा प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने मनीषा पटेल इन्हें बाद भाई बोनो ठीक 9:30 माते आप हम रोगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी भाई बोनो हमारी आप तक की हिंदी मुलाकात था का कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में ठीक 10 बजे आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी इन्हें बाद भाई बोनो शुरू था का अपनी पसंद का कार्यक्रम जिन्हें आप हम रिशकों का परबाते 11 तक की बोपरनी 1 बजे निवास में भाई बोनो अगर आप भी अपनी फरमाइश न गीत ने हम रोचा हो तो मैंने लकीन मोकली शको फिल्म नाम गीत ना बोल आपनो नाम ने अपना गाम नो नाम हमारे अण व्हाट्सएप नंबर माते हमारो नंबर है 9460051234। तो भाई बोनो आ तो हती हमारी आज ने परबात ने सभा में प्रसारित थवा वाली कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा अब आवो अपने सभा ने शुरुआत करा भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक की जुड़ कार्यक्रम आराधना तक की

0: आज के सुविचार।
1: मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। धन, प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञात था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीबाड़ी हमरवारा हंगरे किसान भाई बोन ने आप निपोन जागृति नु राम राम। आप सब हमरे रहो आपणो सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM ने आप सबनु स्वागत कर हा अपने आज कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। जिम के किसान भाई बोन आप सब ने खबर हसे कि हमें रोज से नवा नवा विषय माते बातें कर हा अना कार्यक्रम में, तो आज भी एक नव विषय जोड़ाई रो है। आज नो विषय है पशु अने दूध उत्पादन अपने हरते बढ़ावी सका, तो आना विषय माते आज आप बातें तो करंगा, पर कार्यक्रम की शुरुआत में आप हमरेला कितने मोरे कर अपनी बातें। आप सब हमबड़ते रहो आपड़ो रेडियो अपनी बातें वागर रेडियो 90.8 FM माते।

0: वो पशु को बदल बदल कर खिलाएं। एक तरीका होता है कि चारे को पूरा जिस तरह से खेत से या चारागाह से लाया जा रहा है उसी तरीके से उनको डाल दिया जाता है।
1: जी जी।
0: इसकी बजाय यदि चारे को काटने की जो मशीन आती है जिसको कुट्टी मशीन बोलते हैं और छोटी सी होती है, उससे यदि उसको काट के कुंडी बना के उसमें डाल के खिलाया जाए तो इससे एक तो आपके चारे के पोषक और बढ़ जाते हैं।
1: जी जी।
0: दूसरा चारे की बर्बादी कम से कम होती है, यानी कि आप बोल सकते हैं ना के बराबर ही होती है।
1: जी बिल्कुल।
0: और जब अलग अलग तरह का चारा देते हैं तो अलग अलग तरह के चारे में, चाहे सूखा चारा हो चाहे गीला चारा हो, इस तरह से खिलाने से अलग अलग चारे में जो विटामिन प्रोटीन्स होते हैं वो उनको मिल पाते हैं। तो शरीर में जिस भी विटामिन प्रोटीन्स की कमी हो रही है वो अलग अलग तरह का चारा उसकी पूर्ति करता जाता है।
1: जी जी।
0: और एक और चीज इसमें देखी जाए तो जो ज्यादातर पशुधन विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि शाम को दूध दुहने के बाद सूखा चारा खिलाने की वो सलाह देते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: जितना हो सके दिन में यदि हरा चारा खिला सकें वो भी अलग अलग तरह का तो वो ज्यादा बेहतर होगा।
1: जी हाँ।
0: इसके साथ ही अगर खली खिलाते हैं किसी प्रकार की तो उसमें भी स्थानीय स्तर पे जो खली उपलब्ध हो सकती है अलग अलग तरह की, उनका इस्तेमाल करें। जैसे कपास की हो सकती है, मूंगफली की हो सकती है, सोयाबीन की हो सकती है, और अन्य भी यदि वहां पे कोई होती है जैसे तिल की हो सकती है, महुआ की हो सकती है।
1: जी जी।
0: तो इस तरह की अलग अलग खलियों का उपयोग करें जिससे भी उनके शरीर में अनेक प्रकार के पोषण तत्वों की पूर्ति होती रहे।
1: जी बिल्कुल।
0: अब इसके बाद में यदि हम पशुधन को दाने के रूप में अनाज देते हैं तो जैसे मक्का को आटे के रूप में या भूसी जैसे करके थोड़ा मक्का, उसके साथ में चना मिलाया जा सकता है, धान की भूसी मिलाई जा सकती है।
1: जी जी।
0: तो इनको मिलाकर खिलाने की कोशिश करें। और जब इनको खिलाना है आपको लगभग उसके 12 घंटे या 24 घंटे पहले उसको भिगो दें।
1: जी जी।
0: और उसके बाद यदि पशु को खिलाते हैं तो इससे उसकी पोषण क्षमता बढ़ जाती है या पोषक तत्वों की उसमें मात्रा बढ़ जाती है। और उसको खिलाने से एक तो पशु को उसको पचाने में कोई दिक्कत नहीं होती है और उसके सारे पोषक तत्वों को जो शरीर है वो अवशोषित कर पाता है।
1: जी बिल्कुल।
0: इसी तरह से कुछ पशुपालक खनिज मिश्रण का उपयोग करते हैं तो खनिज मिश्रण यदि उनको उपलब्ध कराए जाते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा।
1: जी हाँ।
0: यदि आप खनिज मिश्रण नहीं देते हैं तो इससे पशु के शरीर में जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है जिससे दूध की पैदावार प्रभावित होती है।
1: जी हाँ।
0: और कई बार हम देखते हैं कि शरीर में खनिज तत्वों की कमी के कारण पशु की प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है। तो इसलिए कुछ ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए घर में भी खनिज तत्वों के ईंट वगैरह बनाए जा सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल।
0: जिसके बारे में वाग्धारा संस्था के माध्यम से समय समय पे गांव में इसकी जानकारी दी जाती है कि किस तरह से पोषण ईंट बनाई जाती है, जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से ही बनाई जा सकती है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो पशुपालक यदि इसको भी बना के इसका उपयोग करते हैं तो आवश्यकता होने पर पशुधन स्वेच्छा से इसका उपयोग करता है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: और उन सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति
1: की जा सकती है। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो ये तो हम जान पाए कि किस तरीके से हम पशुओं का पोषण जो है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। यही अब बात ये आती है कि पोषण संबंधित अगर जानकारी हम पूरी तरीके से रख रहे हैं, पशुओं को पोषण दे रहे हैं और फिर भी अगर दूध उत्पादन जो है वो नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या ऐसे सुझाव हैं जो हमारे किसान भाई बहनों को अपनाने चाहिए?
0: पहला तो हम यदि बात करें तो हम जैसे कि शुरुआत में तीन बिंदुओं पे बात करना शुरू किए हैं तो उसमें से एक होता है पशुओं का तनाव।
1: जी बिल्कुल।
0: ये आवास से संबंधित भी हो सकता है, उनकी दिनचर्या से संबंधित भी हो सकता है। तो किसान अपने पशु के तनाव के कारणों को ढूंढे और उन्हें दूर करें। अगर एक सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाए तो हर दिन एक जैसी दिनचर्या का पालन करें तो इससे पशुधन में जो तनाव होता है वो काफी हद तक कम
1: हो जाता है। जी बिल्कुल।
0: ना, जैसे गर्मी के दिन है तो पशुधन को दो बार नहलाना संभव हो तो वो नहला दें जिससे उसके शरीर का तापमान बना रहे। जहां भी हम उनको बांधते हैं या रखते हैं उस जगह की सफाई दिन में दो बार तीन बार कर लें। जिससे वो वहाँ पे साफ सुथरा और बेहतर महसूस करें।

0: हमारे जानवरों को पीटा या धमकाया ना जाए, इसका असर पशुधन के मस्तिष्क पे होता है। पशु शेड जो हमारा होता है वहाँ कोशिश करें कि साफ सफाई इस तरह की हो, मच्छर ज्यादा ना हो, मक्खियाँ ज्यादा ना हो, जू चिचड़े वहाँ पनप ना पाए।
1: जी बिल्कुल।
0: और इसके साथ ही जो दूध निकालने वाले व्यक्ति हैं, बेहतर होगा कि दूध जो निकालते हैं वही व्यक्ति प्रतिदिन दूध निकाले, और जिस समय पे दूध निकालते हैं उसी समय पे दूध निकाले।
1: जी बिल्कुल।
0: इससे भी पशुधन को तनाव हो सकता है, और यदि हम नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं और कुछ तनाव के कारक हैं जिनका हम ध्यान रखें, जैसे गर्मी है तो उनको धूप में ना बांधें, सर्दी है तो खुले में ना बांधें, जिससे पशु को तनाव ना हो और उसकी जो दूध उत्पादन क्षमता है वो स्थिर बनी रहे। अब अंतिम बिंदु आता है कि हम बात करते हैं कि स्थानीय स्तर पे जो पशु चिकित्सा के हमारे उपाय थे, परंपरागत उपाय, इनकी जानकारियां हमारे पास कम होती जा रही हैं या लुप्त होती जा रही हैं, जिसके कारण कई बार हम ये समझ नहीं पाते हैं कि पशुधन को क्या समस्या हो रही है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो सामान्य रूप से समझ लीजिए कि यदि नियमित रूप से नियमित अंतराल पे हर त्रैमासिक में पशु को कृमि मुक्त करने के लिए हम स्थानीय स्तर पे उपलब्ध दवाइयां खिला दें तो इससे काफी दूध उत्पादन प्रभावित होता है।
1: जी हाँ।
0: तो उसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। ऐसे पहले भी हमने बात की कि गर्मी है तो धूप में ना बांधे, ठंडी है तो खुले में ना छोड़ें।
1: जी जी।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी है कि कुछ समय के लिए पशुधन को खुले में छोड़ना जरूरी है। तो मौसम के अनुसार जो समय हमको भी ठीक लगता है कि इस समय हम बाहर निकल सकते हैं, उस समय उनको थोड़ा समय खुले में छोड़ना भी जरूरी है, जिससे उनकी पाचन क्षमता और शारीरिक क्रियाएं सामान्य रहें।
1: जी बिल्कुल।
0: एक खुश पशु अधिक दूध देता है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। और मूल रूप से बकरी, गाय, भैंस, जिनको भी हम दूध उत्पादन के लिए या अन्य जरूरतों के लिए भी पालन कर रहे हैं, उनकी जरूरतों का हम ध्यान रखें।
1: जी हाँ।
0: और उनकी जरूरतों को पूरा करें। जब आप ऐसा करेंगे तो हमारा पशुधन अधिकतम दूध देंगे और साथ में दूध में वसा की मात्रा भी अच्छी होगी, जिससे हमको उस दूध का अधिकतम लाभ मिल पाएगा।
1: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि पशुधन में दूध उत्पादन बढ़ाने के क्या उपाय किए जा सकते हैं और क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से उनके उत्पादन में कमी आती है। तो आशा करते हैं कि हमारे श्रोता साथियों को ये सभी बातें अवश्य पसंद आई होगी। तो सर, अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे पशुपालक जो किसान भाई बहन हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: तो मैं अंत में सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर दूध उत्पादन के लिए आप पशुधन पालन करते हैं तो इन तीन बिंदुओं का हमेशा यदि ध्यान रख के इनका पालन करेंगे तो आप स्थानीय स्तर की जो वंश हैं उससे मिलने वाले दूध की बराबर मात्रा और गुणवत्तापूर्ण दूध प्राप्त कर पाएंगे, जिससे कि हमारे परिवार में भी पोषण की पूर्ति हो पाएगी और इससे आर्थिक लाभ भी वो कमा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो सर, जैसा कि कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे ढेर सारी हो गई हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका अमूल्य कीमती समय आपने हमें और हमारे श्रोता साथियों को दिया।
0: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी।
2: जिम के किसान भाई बहन, आज आप स्टूडियो में मनीष जी सर आया था ने अनंत की बातें आपने रेडियो साथी अंजलि फोन करी रही थी कि पशु दूध उत्पादन आपने हरते बढ़ावी शका ने आनु हूँ महत्व है। जिम की मनीष जी आपने बताड़ियो कि पशु आवास केवु रेवुज हुए, पशु नु ध्यान आपने हरते राखवुज हुए। अगर पशु नु ध्यान आपने असल तरीका था कि राखंगा तो आपने जे दूध नी बात करा इनु उत्पादन आपने वधावी शकंगा, ने अगर जे की दूध नु उत्पादन वधी गयु तो आपणी आजीविका भी असल तरीका थकी साली सागा। केम के आपणे दीकस के अगर दूध वधारे मळ्यो तो आपणे वेसी भी शकंगा, तो बे पैसो आपणे मळेगा, एना साथे आपणे घरनो दूध भी पीवा मळेगा ने घरनो दूध खावा मळेगा। आपणे जिमकी कारे सब्जी नी हो तो दूध आते भी आपणे खाई शका। तो आपणे आपणे ध्यान देवू है कि पशुओने दूध उत्पादन आपणे हरते वधावू है, ने जे जे वाते आपणे मनीषजी सारे आपणे करी ई आपणे ध्यान में राखवी है। अने प्रकार थकी अगर आ वाते आपणे ध्यान में राखंगा तो आपणे दूध उत्पादन वधावी शकंगा ने आपणे पशुनु ध्यान भी राखी शकंगा। तो हवे आप दीकी रहो कि टेम थई गयो है सूटा पड़वानो, तो सूटा तो पड़ो पण साथे साथे हांभळी लो एक और गीत ने मोरे पड़ सूटा।

किसान भाई बुन अणस की थाते पड़ सूट आशा करा की जेबी वाते रही कार्यक्रम खेती बाड़ी में ये आपने गमी होगा। आपने हमारो आजनुआ कार्यक्रम केवो लाग्यो एना बारा में आप राय सुझाव आली शको। आपने अणा पता माते आपड़ो पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। आपड़ो पिन कोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बले आप मने फोन करी शको। आपड़े अणा फोन नंबर माते आपड़ो फोन नंबर है 9460051234। तो किसान भाई बुन फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में एक ना विषय ने हाथ दे तारोदी। राम राम राम राम।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तक ही करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आराज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि बच्चों के लिए खुला मैदान क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि आज का बचपन पहले जैसा नहीं रहा।
0: जी हाँ,
1: एक समय था श्रोता साथियों जब गाँवों और मोहल्लों में बच्चे खुले मैदान में दौड़ते थे, मिट्टी में खेलते थे, पेड़ों के नीचे बैठते थे, दोस्तों के साथ कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, क्रिकेट जैसे खेल खेलते थे।
0: बिल्कुल,
1: शाम होते ही मैदान जो है वो बच्चों की हंसी आवाजों से भरे जाते थे। लेकिन आज धीरे धीरे ये दृश्य कम होते जा रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: अब बच्चों का अधिक समय कशिश मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम, बंद कमरों में बीतने लगा है। शहरों में मैदान कम हो रहे हैं और गाँव में भी खाली जगह सिकुड़ती जा रही है। इसका असर कशिश केवल बच्चों के खेलने पर नहीं बल्कि उनके पूरे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर पड़ रहा है।
0: बिल्कुल,
1: खुला मैदान केवल खेलने की जगह नहीं होती है दोस्तों, बल्कि बच्चों के सीखने, बढ़ने, दोस्ती करने और जीवन को समझने की पहली पाठशाला होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे श्रोता साथियों को गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना अच्छा लगता है,
1: बिल्कुल,
0: और ये हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है, तो क्यों ना हमारे दोस्तों को पहले यहाँ पर गीत सुनवा दे और फिर से हमारी बातचीत की हम शुरुआत करें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।
2: चिटिकी टक टक चिक टक, चिटिकी टक

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और गीत से पहले हमने विषय से रूबरू आपको करा ही दिया था कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों के लिए खुला मैदान क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, अगर बात करें तो देखते हैं कि शारीरिक विकास के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि बच्चों का शरीर लगातार वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल,
0: उनमें मोटापे की समस्या बढ़ रही है। ऐसे में दोस्तों उन्हें दौड़ने कूदने भागने और साथ ही ज्यादा से ज्यादा शारीरिक गतिविधियां करने की जरूरत है। खुला मैदान बच्चों को यह अवसर देगा अंजलि जी, क्योंकि जब बच्चे मैदान में खेलेंगे तब उनका शरीर मजबूत बनेगा, हड्डियां मजबूत होंगी और मांसपेशियां भी विकसित होंगी।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही शरीर में फुर्ती आएगी दोस्तों। और साथ ही नियमित रूप से खेल खेलने से बच्चों को मोटापे कमजोरी और कई बीमारियों से भी राहत मिलेगी। आज हम देखते हैं अंजलि जी कि कई बच्चे छोटी उम्र में ही थकान मोटापा और आंखों की समस्या का सामना कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में इसका एक बहुत बड़ा कारण शारीरिक गतिविधियों की कमी भी है।
1: बिल्कुल, यही कशिश अब बात आती है कि खुला मैदान बच्चों के मन को भी स्वस्थ रखता है। जब बच्चे प्रकृति के बीच खेलते हैं श्रोता साथियों, तो खुली हवा में सांस लेते हैं और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, तब उनका तनाव कम होता है।
0: बिल्कुल,
1: आज पढ़ाई का दबाव, मोबाइल की लत, अकेलापन बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा है। ऐसे में श्रोता साथियों, खुला मैदान बच्चों को खुशी, स्वतंत्रता और मानसिक शांति देता है।
0: जी हाँ,
1: खेलते समय बच्चे खुलकर हंसते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और मन हल्का महसूस करता है।
0: बिल्कुल,
1: यही चीज उनके मानसिक विकास को मजबूत बनाती है। कह सकते हैं कशिश कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि अगर बच्चों को खेलने के लिए सुरक्षित और अच्छा मैदान मिलेगा तो वे स्वाभाविक रूप से बाहर खेलने की ओर आकर्षित होंगे।
0: जी हाँ,
1: आज कई परिवार इस बात से परेशान है कि बच्चे मोबाइल छोड़ते नहीं, लेकिन जब बच्चों को दोस्तों के साथ खेलने दौड़ने और नई गतिविधियां करने का मौका मिलता है तब वे स्क्रीन से दूर होने लगते हैं। खुला मैदान बच्चों को वास्तविक दुनिया से जोड़ता है, जबकि मोबाइल उन्हें सीमित दुनिया में कैद कर देता है। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि मैदान बच्चों को केवल खेलना नहीं सिखाता बल्कि जीवन जीना भी सिखाता है। जब बच्चे समूह में खेलते हैं कशिश, तब वे मिलजुल कर रहना सीखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: दूसरों की बात सुनना सीखते हैं, हार और जीत को स्वीकार करना सीखते हैं, सहयोग और टीम वर्क समझते हैं, दोस्ती और अनुशासन सीखते हैं। श्रोता साथियों, ये गुण किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से आते हैं।
0: बिल्कुल,
1: मैदान बच्चों को समाज से जोड़ता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि खुले मैदान में खेलने से बच्चों को ढेर सारे फायदे होते हैं। अब यही अगर बात करें आत्मविश्वास की, तो हम देखते हैं कि जब बच्चा मैदान में कोई खेल सीखता है, दौड़ जीतता है या फिर टीम का हिस्सा बनता है अंजलि जी, या फिर कोई नई चीजें करता है, तब उसका आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज नहीं होते लेकिन खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैदान ऐसे बच्चों को अपनी पहचान बनाने का अवसर देते हैं। साथियों, हम देख सकते हैं कि हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा होती ही है।
1: बिल्कुल,
0: और खुला मैदान उस प्रतिभा को सामने लाने में मदद करता है। साथियों,
1: जी हाँ,
0: इसी के साथ हम देखते हैं कि बच्चों का प्रकृति से जुड़ाव भी होता है, क्योंकि अंजलि जी खुला मैदान बच्चों को प्रकृति के करीब लाने के लिए अवसर देता है।
1: जी जी,
0: वे मिट्टी, पेड़ पौधे, पक्षी और मौसम को महसूस कर पाते हैं। इससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है, और हम कह सकते हैं कि जो बच्चे प्रकृति के बीच बड़े होते हैं वे अधिक शांत, संवेदनशील और संतुलित स्वभाव के भी होते हैं।
1: जी हाँ, तो कशिश जैसा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें चल रही है हमारी श्रोता साथियों से कि बच्चों के लिए खुला मैदान क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं। ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले कशिश हम जान पा रहे थे कि खुला मैदान बच्चों के लिए क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: जिसमें हमने जाना शारीरिक विकास के लिए जरूरी है, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मोबाइल और स्क्रीन की लत कम होती है, सामाजिक गुण विकसित होते हैं, साथ ही आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रकृति से जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ कहना चाहूंगी श्रोता साथियों की रचनात्मकता बढ़ती है। मैदान में बच्चे अपनी कल्पना से नए खेल बनाते हैं, नई बातें सोचते हैं, अलग अलग गतिविधियां करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे श्रोता साथियों उनकी रचनात्मक सोच विकसित होती है। बंद कमरे में लगातार स्क्रीन देखने से बच्चों की कल्पना शक्ति सीमित हो सकती है, जबकि खुला वातावरण उनके मन को स्वतंत्र बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: यही बात आती है कि आज मैदान कम क्यों होते जा रहे हैं। तो श्रोता साथियों, बढ़ता शहरीकरण, शहरों में खाली जगहों पर इमारतें कॉलोनियां बन रही हैं, बच्चों के खेलने की जगह कम हो रही है। कई बच्चे सुबह से शाम तक स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क में व्यस्त रहते हैं और खेलने के लिए समय ही नहीं बचता। कुछ माता पिता बच्चों को बाहर भेजने से डरते हैं। सड़क दुर्घटना, गलत संगत, सुरक्षा की चिंता भी यह कारण है।
1: बिल्कुल,
0: अब कशिश बच्चे बाहर खेलने की बजाय मोबाइल पर गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं और यह धीरे धीरे आदत बनती ही जा रही है।
1: जी हाँ,
0: हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से खुले मैदान कम हो रहे हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के आगे अगर बात करें कि मैदान न मिलने के क्या नुकसान हो सकते हैं, तो अगर बच्चों को खुला मैदान खेलने के लिए नहीं मिलेगा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि सबसे पहला नुकसान तो यही है कि बच्चे शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस करेंगे, मोटापा और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाएंगी, बच्चों में चिड़चिड़ापन और तनाव भी बढ़ जाएगा अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही सामाजिक दूरी और अकेलापन की समस्या भी हो सकती है और बच्चों में रचनात्मकता भी कम होगी दोस्तों, और मोबाइल की लत और ज्यादा बढ़ जाएगी। हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे बच्चे प्राकृतिक और वास्तविक जीवन से दूर होते जाएंगे, जो एक सबसे बड़ा नुकसान है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में माता पिता को कुछ उपाय अपनाने चाहिए, जैसे कि सबसे पहले माता पिता ये समझे कि बच्चों की पढ़ाई तो जरूरी है ही, लेकिन खेल भी जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: हर दिन बच्चों को बाहर खेलने का समय मिलना चाहिए और माता पिता को खेलने का समय तय करना चाहिए अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही वे खुद भी प्रेरित करें बच्चों को, जैसे कि अगर बड़े लोग खुद मोबाइल में व्यस्त रहेंगे अंजलि जी, तो बच्चे भी वहीं सीखेंगे।
0: जी हाँ,
1: इसलिए परिवार को और माता पिता को मिलकर बच्चों के साथ बाहर समय बिताना चाहिए।
0: इसी के साथ कशिश बात आती है कि कबड्डी, खो खो, रस्सी कूदना, पकड़म पकड़ाई जैसे खेल बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, इसलिए हमें स्थानीय खेलों को भी बढ़ावा देना है। गांव और मोहल्लों में बच्चों के लिए सुरक्षित खेल स्थान तैयार किए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, ये केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज और प्रशासन को भी बच्चों के लिए मैदान बचाने होंगे। गांव और शहरों में खेल मैदान सुरक्षित किए जाए, स्कूलों में खेलों को महत्व दिया जाए, बच्चों के खेल कार्यक्रम आयोजित हों, पार्क और खुले स्थान बनाए जाए। जब समाज बच्चों को खेलने का अधिकार देगा, तभी स्वस्थ पीढ़ी तैयार होगी। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि खुला मैदान बच्चों के लिए केवल मनोरंजन की जगह नहीं
1: जी,
0: बल्कि उनके स्वस्थ भविष्य की नींव है। मैदान बच्चों को मजबूत शरीर, स्वस्थ मन, अच्छे संस्कार, आत्मविश्वास और सामाजिक समझ देता है। अगर हम बच्चों से मैदान छीन लेंगे कशिश, तो हम उनसे उनका स्वाभाविक बचपन छीन लेंगे।
1: बिल्कुल,
0: मोबाइल और बंद कमरे कभी भी उस खुशी, सीख और स्वतंत्रता की जगह नहीं ले सकते जो खुला मैदान देता है।
1: जी हाँ,
0: हमें समझना होगा कि बच्चों को केवल अच्छी पढ़ाई ही नहीं, बल्कि खुलकर जीने का अवसर भी चाहिए। हम सबको मिलकर ऐसा समाज बनाना होगा जहाँ हर बच्चे को खेलने, दौड़ने, गिरने, उठने और मुस्कुराने के लिए खुला मैदान मिल सके। यही स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बचपन की असली पहचान है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हुई। हमने जाना कि किस प्रकार से खुले मैदान जो है वो हमारे बच्चों के लिए जरूरी है, और जब हमारे बच्चों को खुले मैदान में खेलना मिलेगा तो उनके क्या शारीरिक और मानसिक फायदे हो सकते हैं, ये भी हम जान पाए हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: अब जैसा कि बातें पूरी हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल,
2: चकलो रम गंडो वंडो लकर कटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकन का हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकला का बिको चिको सिली सिली सिली गो बगड़ दुम चकड़ दुम चिकी चकचो।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी जी।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाघधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल।
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है कि सही सवाल पूछने की ताकत सफलता की पहली सीढ़ी होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी।
1: श्रोता साथियों, अक्सर हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो अधिक सवाल पूछता है वो बहुत परेशान करता है। कई बार बच्चों को ये कहकर चुप करा दिया जाता है कशिश कि इतने सवाल मत पूछो। धीरे धीरे ये आदत युवा अवस्था तक पहुँच जाती है और बहुत से युवा अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को दबा देते हैं।
0: जी जी।
1: लेकिन सच ये है श्रोता साथियों कि सवाल पूछना कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है।
0: जी हाँ।
1: दुनिया में जितनी बड़ी खोजें हुई हैं, जितने भी नए विचार सामने आए हैं और जितनी भी नई राहें बनी हैं, उनकी शुरुआत किसी न किसी सवाल से हुई है।
0: बिल्कुल।
1: यदि किसी ने ये सवाल न पूछा होता कि क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता है, तो शायद आज दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ पाती।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें करने वाले हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं इस गीत को। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि सही सवाल पूछने की ताकत सफलता की पहली सीढ़ी है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले हमारे युवा साथियों को ये बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि माता पिता बचपन से ही बच्चों को कम सवाल पूछने की आदत डलवाते हैं, लेकिन जब यही आदत युवावस्था तक रहती है तो युवा साथी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और अपने सवालों को दबा कर रखते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे में श्रोता साथियों, आज का जो युवा है वो एक ऐसे समय में जी रहा है जहाँ जानकारी की कोई कमी नहीं है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हर पल लाखों जानकारी उपलब्ध है जागृति जी।
1: जी हाँ।
0: लेकिन जानकारी होना और सही जानकारी होना, इन दोनों बातों में फर्क होता है। श्रोता साथियों, ये दोनों ही बातें अलग अलग हैं, इसलिए आज सबसे अधिक आवश्यकता केवल उत्तर खोजने की नहीं बल्कि सही सवाल पूछने की है जागृति जी।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हर इंसान जन्म से जिज्ञासु होता है। छोटा बच्चा हर बात पर पूछता है, ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, और यही जिज्ञासा उसे सीखने की ओर ले जाती है।
0: बिल्कुल,
1: जब युवा सवाल पूछते हैं तब वे केवल जानकारी नहीं जुटाते बल्कि अपनी सोच का विस्तार भी करते हैं। जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है वो केवल सुनकर विश्वास नहीं करता बल्कि समझने की कोशिश भी करता है।
0: जी जी।
1: और यही आदत उसे दूसरों से अलग बनाती है। आज हम देखते हैं कशिश की शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों के उत्तर याद करना नहीं है। असली शिक्षा तो वो है जो सोचने, समझने और सही प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करे।
0: बिल्कुल।
1: जिस दिन युवा प्रश्न पूछना सीख जाएगा उसी दिन उनका वास्तविक विकास भी शुरू हो जाएगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। साथ ही हम देखते हैं कि अगर हमारे युवा साथी अपने सवालों को पूछते नहीं हैं, तो इससे उनके मन में बेचैनी बनी रहती है।
1: बिल्कुल।
0: जिसके कारण दोस्तों हमें ढेर सारे नुकसान हो सकते हैं। अगर उन नुकसानों की बात करें तो जीवन में हर दिन हमें छोटे छोटे और बड़े निर्णय तो लेने ही पड़ते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कई बार जागृति जी, युवा बिना पूरी जानकारी के केवल दूसरों को देखकर फैसले ले लेते हैं। कोई दोस्त किसी कोर्स में अगर जा रहा है इसलिए हम भी उसी में प्रवेश ले लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कोई सोशल मीडिया पर किसी करियर की तारीफ कर रहा है इसलिए हमें भी वही अच्छा लगने लगता है। लेकिन दोस्तों, यदि हम पहले कुछ जरूरी सवाल पूछें कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मेरी इसमें रुचि है, कि क्या इसमें भविष्य में कोई अवसर है मेरे लिए, तो दोस्तों ये सभी जो बातें हैं उन सभी से हम गलत निर्णयों से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अच्छे निर्णय हमेशा सही जानकारी और सही सवालों पर ही आधारित होते हैं जागृति जी।
1: जी हाँ कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, युवाओं के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है करियर का चुनाव। कशिश, हम देखते हैं कि करियर चुनते समय केवल ये हमें नहीं सोचना है कि कौन सा क्षेत्र हमारे लिए लोकप्रिय है।
0: बिल्कुल।
1: हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे किस काम में खुशी मिलती है, मेरी सबसे बड़ी क्षमता क्या है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर कितने होंगे, मुझे कौन कौन से कौशल सीखने होंगे, क्या मैं इस क्षेत्र में लंबे समय तक काम करना चाहता हूँ या चाहूंगी। श्रोताओं, जब इन प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाए तब करियर का रास्ता काफी हद तक स्पष्ट हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम देखते हैं कशिश की, सोशल मीडिया हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, लेकिन यहाँ हर वीडियो, हर पोस्ट और हर समाचार सही हो ये जरूरी भी नहीं है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि दोस्तों कई बार अधूरी या झूठी जानकारी बहुत तेजी से फैल जाती है।
1: बिल्कुल।
0: यदि हम बिना जांच किए उस पर विश्वास करने लगे जागृति जी, तो हम स्वयं भी भ्रमित होंगे और दूसरों को भी इसके प्रति भ्रमित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए हमारे युवा साथियों को एक आदत बनानी चाहिए, वो ये कि किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसके स्रोत, प्रमाण और सत्यता की जांच अवश्य करनी है।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि दोस्तों यही एक अच्छे नागरिक

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी, सही सवाल पूछने की ताकत सफलता की पहली सीढ़ी होती है।
1: बिल्कुल,
0: इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने गीत से पहले जाना था कि सवाल ही सीखने की पहली सीढ़ी होती है। बिना सवाल पूछे निर्णय लेने के नुकसान क्या होते हैं, करियर चुनने से पहले कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, सोशल मीडिया पर हर बात सही नहीं होती, ये सारी बातें हमने करी थी कशिश
1: जी। जी,
0: यही बात करते हैं आलोचनात्मक सोच क्यों जरूरी है। श्रोता साथियों, सिर्फ सुन लेना पर्याप्त नहीं है, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि जो बात कही जा रही है वो कितनी सही है। आलोचनात्मक सोच का अर्थ किसी की आलोचना करना नहीं, बल्कि हर विषय को तर्क, तथ्य और समझ के आधार पर परखना है।
1: बिल्कुल,
0: जब युवा ये सोच विकसित करते हैं तब वे अफवाहों से बचते हैं, गलत निर्णय नहीं लेते और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले नागरिक जरूर बनते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें तो जो युवा अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं वे धीरे धीरे अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, प्रश्न पूछने से ज्ञान बढ़ता है, समझ मजबूत होती है और संवाद करने की क्षमता विकसित होती है। जैसे कि कार्यस्थल, कॉलेज, प्रतियोगी परीक्षाएं और इंटरव्यू में वही युवा आगे निकलते हैं जागृति जी, जो सही समय पर सही प्रश्न पूछना जानते हो।
0: बिल्कुल,
1: देख सकते हैं कि बहुत से युवाओं के मन में अक्सर ये डर

0: होता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, कुछ सोचते हैं कि कहीं उनका प्रश्न गलत ना निकल जाए, और कुछ संकोच के कारण चुप रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़ा नुकसान गलत सवाल पूछने से नहीं होता, बल्कि सही सवाल न पूछने से होता है। जिस वातावरण में प्रश्न पूछने की आजादी होती है श्रोता साथियों, वही नए विचार जन्म लेते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि इसके लिए कुछ सरल आदतें अपनाई जा सकती है, जैसे कि हम रोज कुछ नया पढ़े, किसी बात को ध्यान से सुने, जो बात समझ नहीं आए उसे नोट करें, अनुभवी लोगों से चर्चा करें, किसी विषय को केवल याद नहीं करें बल्कि समझने का प्रयास करें। धीरे धीरे हमारा मन हर विषय को गहराई से समझने लगेगा श्रोताओं, और सही प्रश्न अपने आप बनने लगेगा। इतिहास गवाह कशिश की जिन्होंने दुनिया को नई दिशा दी, उन्होंने सबसे पहले सवाल पूछे, उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि जो पहले से है वही अंतिम सत्य है, उन्होंने नई संभावनाएं खोजी और अपने प्रयासों से समाज को आगे बढ़ाया।
0: बिल्कुल,
1: और यही सोच आज के युवाओं को भी अपनानी होगी। परिवर्तन हमेशा जिज्ञासा से ही शुरू होता है।
0: जी हाँ जागृति जी, दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि परिवार बच्चों के प्रश्नों का सम्मान अगर करेंगे तो शिक्षक छात्रों को सोचने का अवसर भी देंगे। यदि जागृति जी कॉलेज और कार्यस्थल पर खुला संवाद होगा तो युवा अधिक रचनात्मक बनेंगे।
1: बिल्कुल
0: साथियों, ऐसा समाज जहां प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है, वहीं समाज विज्ञान शिक्षा तकनीक और संस्कृति के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: हम कहना चाहेंगे हमारे युवा साथियों को कि दोस्तों आप केवल उत्तर याद करने वाले विद्यार्थी मत बनिए, बल्कि ऐसे नागरिक बनिए जो सही समय पर सही प्रश्न पूछ सके।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि सवाल पूछना आपकी जिज्ञासा का प्रमाण है, और सवाल पूछना आपकी समझ का परिचय है साथियों।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही सवाल पूछना आपके उज्जवल भविष्य की शुरुआत है।
1: जी हाँ कशिश, और हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कह पाएंगे कि श्रोताओं आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI इंटरनेट और नई तकनीकों का दौर है। जानकारी पहले से कहीं अधिक उपलब्ध है, लेकिन सही जानकारी चुनना एक चुनौती बन गया है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे समय में वही युवा आगे बढ़ेंगे जो केवल जानकारी इकट्ठा नहीं करेंगे बल्कि सही प्रश्न पूछकर उसका सही उपयोग करना भी सीखेंगे।
0: जी,
1: भविष्य उन्हीं का होता है कशिश जो सोचने समझने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी बात कहना चाहेंगे आपसे कि याद रखिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल मेहनत ही नहीं सही दिशा भी बहुत जरूरी है, और सही दिशा हमें तब मिलती है जब हम सही प्रश्न पूछते हैं। इसलिए जिज्ञासा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए, सीखने की आदत कभी मत छोड़िए, और हर दिन स्वयं से एक नया प्रश्न पूछिए। यही छोटी सी आदत हमें सामान्य से असाधारण बनने की ओर ले जा सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हुई।
1: बिल्कुल,
0: हमने जैसा कि जाना कि किस प्रकार से हमारे युवाओं को सही सवाल सही समय पर पूछने की आदत को अपनाना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी हम कार्यक्रम के माध्यम से जान पाए हैं।
1: बिल्कुल,
0: अब जैसा कि बातें पूरी हो चुकी है, समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो श्रोता साथियों, विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहेंगे एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेना चाहेंगे और कुछ बातें आपसे करना चाहेंगे। जैसा कि आज की पूरी चर्चा का सार यदि एक वाक्य में कहा जाए तो वह यह है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल जवाब जानना पर्याप्त तो नहीं होता,
1: बिल्कुल
0: सही सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी होता है। कशिश, सवाल केवल शब्द नहीं होते, वे सोच की दिशा भी तय करते हैं।
1: जी जी,
0: एक अच्छा सवाल नई जानकारी का द्वार खुलता है, भ्रम को दूर करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और व्यक्ति को भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाने की प्रेरणा देता है।
1: बिल्कुल,
0: जो युवा सवाल पूछते हैं वे केवल दुनिया को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते, बल्कि ये भी सोचते हैं कि उसे और बेहतर कैसे बनाया जाए।
1: जी जी,
0: तो श्रोता साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि हम केवल तैयार जवाबों पर निर्भर नहीं रहे, हम जिज्ञासु बने, सोचने वाले बने, समझने वाले बने और सही समय पर सही सवाल पूछने वाले युवा बने।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो नई राहें खोजने का साहस रखते हैं और नई राय हमेशा एक सवाल से ही शुरू होती है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए याद रखिए, जिज्ञासा को जिंदा रखिए, सोच को सक्रिय रखिए और सवाल पूछने का साहस कभी मत खोइए, क्योंकि सही सवाल ही हमें सही मंजिल तक पहुँचाने का रास्ता दिखाता है।
1: जी हाँ जागृति जी, इन्हीं उम्मीदों के साथ अब कार्यक्रम से विदा लेते हैं। दोस्तों आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है कि नौकरी नहीं अवसर खोजने की सोच को हमें विकसित करना होगा।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि क्या सफलता का मतलब केवल नौकरी पाना है? क्या जीवन में आगे बढ़ने का एक ही रास्ता सरकारी या निजी नौकरी है?
0: बिल्कुल,
1: आज का दौर बदल रहा है। जो युवा केवल नौकरी की तलाश में है वे सीमित अवसरों में खुद को बांध लेते हैं, जबकि जो युवा अवसरों की तलाश करते हैं वे नए रास्ते बनाते हैं और दूसरों के लिए भी रोजगार के द्वार खोलते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से समझते हैं कि नौकरी खोजने से आगे बढ़कर अवसर खोजने की सोच क्यों और कैसे विकसित करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत के पहले गीत के साथ में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है, नौकरी नहीं अवसर खोजने की सोच को हमें विकसित करना है।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, हम देखते हैं कि आज देश का हर युवा सफलता चाहता है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा बेटी अच्छी नौकरी पाए, सम्मानजनक जीवन जिए और आर्थिक रूप से मजबूत बने। लेकिन एक सवाल हमें स्वयं से पूछना चाहिए श्रोता साथियों, कि क्या सफलता का अर्थ केवल नौकरी प्राप्त करना है? क्या जीवन की सारी संभावनाएं केवल नौकरी तक ही सीमित है? तो श्रोता साथियों, सच्चाई यह है कि दुनिया तेजी से बदल रही है।
0: बिल्कुल।
1: आज वह व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं जो अवसरों को पहचानना और उनका निर्माण करना जानते हैं। जो केवल नौकरी खोजता है वह सीमित विकल्पों पर निर्भर रहता है, लेकिन जो अवसर खोजते हैं जागृति जी, वह अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के द्वार खोल देते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, आज हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। लाखों युवा एक नौकरी के लिए कितने सारे आवेदन करते हैं, कई बार योग्य होने के बावजूद अवसर नहीं मिल पाता, ऐसे में उनमें निराशा बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, यदि हम नौकरी के बजाय अवसर को खोजने की मानसिकता विकसित करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। अवसर केवल बड़े शहरों में नहीं होते, वे हमारे गांवों में भी होते हैं, कस्बों में होते हैं, आसपास के संसाधनों में छिपे होते हैं। सच्चा स्वराज तभी संभव है जब नागरिक आत्मनिर्भर बनता है और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करता है।
1: जी हाँ जागृति जी, अब यही बात आती है कि नौकरी और अवसर में आखिरकार अंतर क्या है। तो श्रोता साथियों, नौकरी हमें किसी संस्था या संगठन द्वारा दिए गए कार्यों को हम करते हैं, वहीं अवसर हमें स्वयं कुछ नया करने, अपनी प्रतिभा दिखाने और अपनी पहचान बनाने का मौका देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: नौकरी हमें आय देती है, लेकिन अवसर हमें आय के साथ साथ विकास, नेतृत्व और नवाचार का अवसर भी देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है जागृति जी कि नौकरी बुरी है। नौकरी महत्वपूर्ण है, लेकिन सोच केवल नौकरी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम समाज की किस समस्या का समाधान कैसे बनकर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज डिजिटल युग है और इंटरनेट ने दुनिया को एक छोटे से गाँव में बदल दिया है। आज कोई व्यक्ति अपने घर से ही ऑनलाइन सेवाएं दे सकता है, अपना व्यवसाय चला सकता है और देश विदेश के ग्राहकों तक पहुंचा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि खेती, डेयरी, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती, हस्तशिल्प, पर्यटन, डिजिटल सेवाएं, ऑनलाइन शिक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, कंटेंट निर्माण, ई कॉमर्स, ये सारे अनेक क्षेत्र नए अवसरों से भरे हुए हैं। और जो भी युवा, जो भी श्रोता साथी समय की मांग को समझता है, वो भविष्य का नेतृत्व करता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज केवल डिग्री प्राप्त करना ही जरूरी नहीं है। यदि डिग्री के साथ कौशल भी हो तभी सफलता की संभावना बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल।
1: कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग, संचार कौशल, तकनीकी ज्ञान, वित्तीय प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता और समस्या समाधान जैसे कौशल व्यक्ति को अवसरों के करीब ले जाते हैं। श्रोता साथियों, सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। जो सीखना बंद कर देते हैं उनकी प्रगति रुक जाती है। देखते हैं जागृति जी कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक स्थिति ही नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है।
0: बिल्कुल।
1: आत्मनिर्भर व्यक्ति समस्याओं के सामने हार नहीं मानता, बल्कि समाधान खोजता है। जब युवा स्वयं के पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है श्रोता साथियों, तब वह परिवार, समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाता है।
0: बिल्कुल।
1: आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा होगा जब युवा अवसरों की तलाश करेंगे और अपने सपनों को साकार करने का साहस दिखाएंगे।
0: बिल्कुल अंजलि, इसलिए कहा भी गया है कि आत्मनिर्भरता की राह अगर हम अपनाएंगे तो उज्जवल भविष्य हम स्वयं बना सकते हैं। श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें तो चल रही है, हम जान पा रहे हैं कि नौकरी नहीं हमें अवसरों को खोजना है। तो ये बातें निरंतर आज के इस कार्यक्रम में बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी, गीत से पहले हमने जाना कि आत्मनिर्भरता की ओर कदम हमें कैसे बढ़ाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: यही अब बात आती है कि स्थानीय संसाधनों में कहीं सारी संभावनाएं छुपी होती हैं, जैसे कि हमारे गाँव में असीम संभावनाएं मौजूद हैं। खेती उत्पादों का प्रसंस्करण, डेयरी उद्योग, बागवानी, मत्स्य पालन, कुटीर उद्योग, स्थानीय कला कौशल अनेक अवसर प्रदान करते हैं। अक्सर लोग अवसरों की तलाश में दूर चले जाते हैं, जबकि कई अवसर उनके आसपास ही मौजूद है। आवश्यकता केवल श्रोता साथियों उन्हें पहचानने की और सही दिशा में प्रयास करने की होती है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि हर समस्या हमारे भीतर एक अवसर छिपा कर रखती है। जहाँ समस्या होती है वहीं समाधान की भी आवश्यकता होती है। श्रोता साथियों, यदि किसी क्षेत्र में पानी की समस्या है तो जल संरक्षण के क्षेत्र में अवसर है। यदि किसानों को बाजार नहीं मिल रहा है तो कृषि विपणन में अवसर है। यदि शिक्षा की कमी है तो शिक्षा सेवाओं में अवसर है। जो व्यक्ति समस्याओं को अवसर में बदलना सीख जाता है अंजलि, वही समाज का नेतृत्व करता है। उद्यमिता केवल व्यवसाय नहीं है श्रोताओं, बल्कि एक सोच है। उद्यमी जोखिम उठाता है, नवाचार करता है और समाज के मूल्यों का निर्माण करता है।
0: बिल्कुल,
1: एक छोटा उद्यम भी कई लोगों को रोजगार दे सकता है। आज देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने।
0: बिल्कुल जागृति जी, अवसर खोजने की राह आसान नहीं होती है। चुनौतियाँ कई सारी आती है, असफलताएं भी मिलती है, लेकिन यही अनुभव भविष्य की सफलता की नींव बनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: महान सफलताओं के पीछे कई संघर्ष छिपे होते हैं। जो व्यक्ति गिरकर फिर उठता है वही अंत में मंजिल तक पहुंचता है। असफलता अंत नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि सीखने का अवसर है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हार नहीं सीख का नाम है असफलता, आगे बढ़ना ही है सफलता।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि जब युवा अवसरों की पहचान करना सीखते हैं तब उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। वे केवल अपने लिए नहीं सोचते बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी अपना योगदान देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो नई सोच, नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़े। कहा भी गया है कि अगर युवा जागेंगे तो देश बढ़ेगा और नए विचारों से भविष्य नया बनेगा।
0: जी हाँ जागृति जी, सरकार द्वारा स्वरोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब नागरिक जागरूक होंगे। जानकारी भी एक शक्ति है, अवसर तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, सच्चा स्वराज केवल शासन व्यवस्था का विषय नहीं है। इसका अर्थ है ऐसा समाज जहां लोग आत्मनिर्भर हो, जागरूक हो और अपने विकास की जिम्मेदारी स्वयं उठाएं।
1: बिल्कुल,
0: जब युवा अवसरों का निर्माण करते हैं जागृति जी, तब गांव मजबूत होते हैं। गांव मजबूत होते हैं तो राष्ट्र मजबूत होता है और यही सच्चे स्वराज की भावना है। स्वराज का अर्थ केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। अवसरों की खोज उसी जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, जीवन में अगर आपको नौकरी मिल रही है तो आप उसका सम्मान कीजिए, लेकिन अपने सपनों को केवल नौकरी तक सीमित मत रखिए। अपने भीतर छिपी प्रतिभाओं को पहचानिए, नए अवसरों को खोजिए, चुनौतियों को स्वीकार कीजिए और अपने जीवन का मार्ग स्वयं बनाइए। याद रखिए, दुनिया में परिवर्तन हमेशा उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने अवसरों का इंतजार नहीं किया बल्कि अवसरों का निर्माण किया। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि हम केवल नौकरी तलाशने वाले युवा नहीं बने बल्कि अवसर खोजने और अवसर पैदा करने वाले जागरूक नागरिक भी बने। यही आत्मनिर्भर भारत की राह है, यही युवा शक्ति का सम्मान है और यही सच्चे स्वराज की सच्ची पहचान है।
0: बिल्कुल,
1: कहा गया अंजलि कि नौकरी नहीं बल्कि हमें अवसरों को पहचानना है, स्वावलंबी भारत की नई उड़ान बनना है, खुद भी बढ़ना है और औरों को भी बढ़ाना है, साथ ही सच्चे स्वराज का सपना भी साकार करना है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि नौकरी नहीं हमें अवसर खोजने की सोच को विकसित करना है। ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके क्या फायदे हैं और किस तरीके से हमारे जो श्रोता साथी हैं उन्हें जागरूक होने की जरूरत है, इन ढेर सारी बातों को हम कार्यक्रम के माध्यम से जान पाए।
1: बिल्कुल,
0: आशा करते हैं कि ये सभी बातें उन्हें अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे, पर अंत में आपसे ये कहना चाहेंगे कि आज की चर्चा का सार केवल इतना नहीं है कि नौकरी छोड़कर व्यवसाय शुरू कर दिया जाए, बल्कि ये है कि हम अपनी सोच को सीमित न रखें। जीवन में नौकरी करना भी सम्मानजनक है, लेकिन केवल नौकरी को ही सफलता का एकमात्र रास्ता मान लेना हमारी संभावनाओं को छोटा कर देता है।
1: बिल्कुल,
0: सच्ची सफलता तब मिलती है अंजलि जब हम अपनी प्रतिभा, अपने कौशल और अपने आसपास मौजूद अवसरों को पहचानते हैं और उनका उपयोग समाज तथा राष्ट्र के विकास के लिए करते हैं। याद रखिए, अवसर कभी आसमान से नहीं टपकते श्रोताओं, अवसर उन लोगों को दिखाई देते हैं जो जागरूक होते हैं, जो सीखने के लिए तैयार होते हैं, जो कठिनाइयों से घबराते नहीं और जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। जो युवा केवल नौकरी की प्रतीक्षा करता है वह अवसर आने का इंतजार करता रहता है, लेकिन जो युवा अवसरों की खोज करता है वह अपनी मेहनत और लगन से नए रास्ते बनाता है। इसलिए श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि सच्चा स्वराज तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक एक महसूस करे कि उसके विकास की जिम्मेदारी भी उसी की है, जब युवा आत्मनिर्भर बनेंगे, जब वे समस्याओं को अवसर में बदलेंगे, जब वे अपने गांव, अपने समाज और अपने देश के लिए कुछ नया करने का संकल्प लेंगे, तब भारत केवल विकसित राष्ट्र ही नहीं बनेगा बल्कि दुनिया के लिए प्रेरणा का केंद्र भी बनेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, जिस दिन हमारे युवा साथी अवसरों को पहचानना सीख जाएंगे उसी दिन आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी, और जिस दिन पूरा समाज अवसरों का निर्माण करना सीख जाता है उसी दिन राष्ट्र की तकदीर भी बदल जाती है।
1: बिल्कुल। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है सूखी खांसी के कारण, लक्षण और उपायों को लेकर।
0: बिल्कुल
1: कशिश, हम देखते हैं कि खांसी शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो श्वसन तंत्र में मौजूद धूल, कफ या किसी बाहरी कण को बाहर निकालने में मदद करती है।
0: बिल्कुल,
1: परंतु जब खांसी बिना बलगम के लगातार और गले में खुजली या जलन के साथ हो तो उसे सूखी खांसी कहा जा सकता है।
0: जी
1: श्रोता साथियों, ये समस्या बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी में पाई जाती है और समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये गंभीर परेशानी का कारण भी बन सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी स्वास्थ्यप्रद विषय को लेकर ढेर सारी बातें हमारे श्रोता साथियों से करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना पहले इसी दस्तूर को निभाते हुए दोस्तों को गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ।

0: कभी कभी।
1: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं सूखी खांसी की समस्या को लेकर।
2: जी बिल्कुल
1: दोस्तों, जैसा कि गीत से पहले भी हम जान पाए थे कि सूखी खांसी एक ऐसी प्राकृतिक रक्षा प्रक्रिया है जो श्वसन मार्ग में धूल, संक्रमण या फिर किसी बाहरी तत्व को बाहर निकालने में मदद करती है। अगर बात करें इस समस्या के कारणों की तो अंजलि जी, हम देखते हैं कि वायरल संक्रमण के कारण भी कई बार लोगों को सूखी खांसी हो जाती है।
2: बिल्कुल
1: दोस्तों, सर्दी जुकाम या फिर फ्लू के बाद अक्सर सूखी खांसी होना एक आम समस्या है, लेकिन ये कई दिनों तक बनी भी रहती है।
2: जी जी।
1: साथ ही बात करें एलर्जी की, तो दोस्तों धूल, धुआं, पालतू जानवरों के बाल या फिर मौसम में बदलाव एलर्जी पैदा करते हैं, जिससे भी सूखी खांसी की समस्या हो जाती है। अगर बात करें प्रदूषण की,
2: जी जी,
1: तो हम देखते हैं अंजलि जी की वर्तमान में होने वाले वाहनों के धुएं, फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसें और प्रदूषित हवा श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है।
2: बिल्कुल।
1: जिसके कारण भी सूखी खांसी की समस्या देखी जाती है।
2: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि ठंडी या सूखी हवाएं, खासकर सर्दियों में ये समस्या होती है। अस्थमा वाले मरीजों को भी ये हो जाती है, खासकर रात में उन्हें सूखी खांसी होती है।
1: जी।
2: इसी के साथ हम देखते हैं कि मानसिक तनाव यानी कि लंबे समय तक तनाव भी इसका कारण हो सकता है। तो श्रोता साथी, इस तरीके से हम ये जान पाए कि सूखी खांसी के आखिरकार कारण क्या है।
1: जी।
2: अगर यही लक्षण की बात करें तो बिना बलगम की खांसी, इसी के साथ गले में खुजली, सूखापन या जलन होना, बोलते समय खांसी का बढ़ना, रात में खांसी अधिक होना और सीने में हल्का दर्द या जकड़न होना, गला बैठना, नींद में बाधा आना, थकान और चिड़चिड़ापन होना, ये सभी लक्षण होते हैं। और ये लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें समझ जाना है कि हमें ये सूखी खांसी हो रही है, तुरंत उसके उपायों के बारे में हमें सोचने की जरूरत है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। अगर उपायों की हम बात करें तो देखते हैं श्रोता साथियों की सूखी खांसी के कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जो हम अपना सकते हैं। जैसे कि बात करें शहद की, तो दोस्तों सूखी खांसी होने पर शहद का सेवन किया जाता है।
2: जी जी।
1: क्योंकि शहद गले को आराम देता है, ऐसे में आपको दिन में 2 से 3 बार 1 चम्मच शहद लेना है गुनगुने पानी के साथ में। बात करें अदरक के काढ़े की, तो दोस्तों अदरक में सूजन कम करने वाले कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो आपको अदरक को पानी में उबाल कर पीना है। साथ ही आप हल्दी वाले दूध का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। अंजलि जी,
2: जी जी।
1: रात को सोने से पहले दोस्तों गर्म दूध में हल्दी मिलाकर आपको लेना है।
2: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम भाप भी ले सकते हैं, यानी कि गर्म पानी की भाप हमें दिन में 1 से 2 बार लेनी है।
1: बिल्कुल।
2: गले और श्वसन मार्ग को ये नमी देता है। इसी के साथ नमक के पानी के गरारे हम कर सकते हैं, जिससे गले की सूजन और जलन कम होती है। तुलसी के पत्तों का भी श्रोता साथियों हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि तुलसी हमारे हर घर के आंगन में पाई जाती है। तुलसी और शहद की चाय बनाकर हम पिए, ये बहुत लाभकारी होती है। इसी के साथ हम मुलेठी को भी काम में ले सकते हैं। श्रोता साथियों, मुलेठी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर हमें उसे चूसना है, जिससे गले की खराश में राहत मिलती है।
1: बिल्कुल।
2: कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों कि अगर हमें सूखी खांसी हो रही है तो हमें पर्याप्त पानी पीना है, जिससे शरीर और गले में नमी बनी रहेगी।
1: बिल्कुल।
2: गुनगुना पानी पी सकते हैं और ठंडे पानी से हमें परहेज करने की जरूरत है, और इसी के साथ धूम्रपान से हमें दूरी बनानी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हम श्रोता साथियों से बातचीत कर ही रहे हैं सूखी खांसी की समस्या को लेकर, और जान रहे हैं कि ऐसे क्या उपाय हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो ये बातें आगे भी हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को एक और गीत के साथ हम मनोरंजन करवाएं।
2: बिल्कुल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले कशिश हमने जाना कि सूखी खांसी क्या होती है, उसके क्या कारण है, क्या लक्षण है, क्या घरेलू उपाय हम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: यही श्रोता साथियों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानियां हमें रखनी है, यानी कि हमें बच्चों को ठंडी चीजें नहीं देनी है, बुजुर्गों को रात में गुनगुना दूध या काढ़ा हमें देना है और कमरे में नमी बनाकर रखनी है। अचानक ठंडी हवा से भी बचाव करने की जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ हम देखते हैं कि हमें डॉक्टर से संपर्क भी करना होता है, यानी कि यदि खांसी 2-3 हफ्ते लगातार चल रही है तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है।
1: जी।
0: अगर खांसते समय खून आ रहा है, हमें तेज बुखार है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, तो तुरंत हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है और डॉक्टर हमें जो भी दवाइयां, जो भी चीजें करने के लिए कह रहे हैं घरेलू तौर पर, वो हमें करने की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि सूखी खांसी भले ही देखने में तो सामान्य लगती है, लेकिन ये हमारे शरीर का एक ऐसा संकेत भी हो सकती है कि हमारे शरीर में कुछ तो ठीक नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: समय रहते इसके कारणों को पहचान कर दोस्तों घरेलू उपाय अपनाने से इस समस्या से राहत भी पाई जा सकती है। आपको बताएं तो स्वस्थ जीवन शैली, स्वच्छ वातावरण और सही खानपान अपनाकर हम सूखी खांसी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि हम देखते हैं अंजलि जी कि कई बार सूखी खांसी मानसिक तनाव का भी कारण बनती है।
0: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि सूखी खांसी केवल गले की एक सामान्य परेशानी नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर की उस चेतावनी का संकेत है जो ये बताता है कि अंदर कहीं न कहीं असंतुलन पैदा हो रहा है।
1: बिल्कुल।
0: बदलती जीवन शैली, बढ़ता प्रदूषण, अनियमित खान पान, तनाव और मौसम में अचानक परिवर्तन,

0: श्रोता साथियों, ये सभी मिलकर सूखी खांसी को जन्म देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यदि समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो यही साधारण सी दिखने वाली खांसी आगे चलकर अस्थमा, एलर्जी या श्वसन तंत्र की गंभीर समस्याओं का रूप ले सकती है।
1: बिल्कुल,
0: केवल घरेलू उपाय इसका इलाज नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने की कला हमें ये सिखाता है। शहद, अदरक, हल्दी, तुलसी और भाप जैसे उपाय न सिर्फ श्रोता साथियों खांसी से राहत देते हैं, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये उपाय यह याद दिलाते हैं कशिश कि छोटी छोटी सावधानियां और नियमित देखभाल बड़े रोगों से हमें बचा सकती है।
1: बिल्कुल,
0: सूखी खांसी को नजरअंदाज करने के बजाय इसे जीवन शैली सुधारने का अवसर समझना चाहिए।
1: जी,
0: स्वच्छ वातावरण, शुद्ध हवा, पर्याप्त पानी, संतुलित आहार और मानसिक शांति, ये सभी मिलकर सूखी खांसी से स्थायी राहत दिला सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब हम शरीर के संकेतों को समझकर कशिश सही समय पर सही कदम उठाते हैं, तभी वास्तविक स्वास्थ्य और सुखी जीवन की नींव मजबूत होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ दोस्तों, बार बार सूखी खांसी का होना इस बात का भी संकेत हो सकता है कि शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। अगर खांसी सिर्फ रात में बढ़ती है साथियों, तो यह एलर्जी, एसिडिटी और अस्थमा की ओर भी इशारा कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं अंजलि जी कि कई बार बच्चे किसी डर, ध्यान आकर्षित करने या फिर आदत के कारण भी खांसते हैं। इसमें श्रोता साथियों संक्रमण नहीं होता। हम देखते हैं कि सूखी खांसी के साथ आवाज फेंटना गले की नसों पर दबाव का संकेत है, जिसे नजरअंदाज करना हमारे लिए भूल हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों कि सुबह खाली पेट खांसी होना, इसलिए श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपनी जीवन शैली में कुछ ऐसे बदलाव करें जिसके माध्यम से जो भी स्वास्थ्य समस्याएं हमें होती हैं उनसे हम निजात पा सकें।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि कशिश कार्यक्रम में ढेर सारी बातें हो गई हैं और समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में होने वाले बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वाघर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM
4: जो चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है जल्दी थकान होना शारीरिक कमजोरी या दस्त में कमी सांस फूलना इत्यादि एनीमिया के लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर अपने नजदीकी राज्य स्वास्थ्य केंद्रों में एनीमिया की निःशुल्क जांच कराएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें आंगनबाड़ी केंद्रों एवं राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों में एनीमिया उपचार की IFA गोलियां निःशुल्क उपलब्ध हैं।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
4: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है जल्दी थकान होना शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी सांस फूलना ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम रोजाना कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर एक नए विषय के साथ हाजिर होते हैं, तो आज भी कार्यक्रम में एक नए विषय को लेकर मैं आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ। दोस्तों, आज हम जिस विषय को लेकर कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं, वो हर उस इंसान के दिल से जुड़ा हुआ है जिसने कभी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखा होगा। जी हाँ साथियों, विषय है सफल लोग किस तरह सोचते हैं। दोस्तों, अक्सर हम किसी सफल व्यक्ति को देखकर कहते हैं, इनकी किस्मत कितनी अच्छी थी, इनके पास मौके थे, इनके पास पैसा था, इनके पास सहारा था। लेकिन साथियों, सच तो यह है कि सफलता सबसे पहले इंसान के दिमाग में जन्म लेती है, फिर सोच बदलती है, फिर आदतें बदलती हैं और फिर जिंदगी ही बदल जाती है। साथियों, तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर मेरी आपसे ढेर सारी बातें होंगी। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो पहले मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में दोस्तों, फिर हमारी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों विषय के बारे में मैं आपको गीत से पहले बता चुकी हूँ कि हम बात कर रहे हैं कि सफल लोग किस तरह सोचते हैं। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि अक्सर हम सफल लोगों को देखकर ये कहते हैं कि इसके पास तो पैसा था इसलिए सफल हुआ, इसके पास सहारा था इसलिए सफल हुआ, या फिर इसको तो मौके बहुत सारे मिले थे। लेकिन दोस्तों सफलता किसी इंसान की किस्मत को देखकर, सहारे को देखकर या फिर पैसे को देखकर नहीं आती है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि सफल लोग हमसे अलग नहीं होते, उनके पास भी दिन के वही 24 घंटे होते हैं, वही मुश्किलें होती हैं और वही संघर्ष होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का होता है साथियों कि वे परिस्थितियों को एक अलग तरीके से देखते हैं, या फिर कहूँ कि वो अपनी परिस्थितियों को देखने का तरीका ही बदल लेते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि सफल लोग आखिर किस तरह सोचते हैं, किस तरीके की आदतें अपनाते हैं और मुश्किल समय में वे खुद को कैसे संभालते हैं। साथ ही

इनकी सोच भीड़ से अलग होती है साथियों। तो अब यही जानते हैं साथियों कि सफल लोग समस्याओं से नहीं समाधान से जुड़ते हैं। आपको बताऊं दोस्तों, तो जीवन में परेशानी हर किसी के पास है। किसी के पास पैसों की समस्या है, किसी के पास समय की कमी है, किसी के पास अवसरों की, तो किसी के पास आत्मविश्वास की। लेकिन दोस्तों, सफल लोग हर समय ये नहीं कहते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वे ये सोचते हैं कि अब इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। और यही सोच श्रोता साथियों उन्हें आगे बढ़ाती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का काम बंद हो गया है, एक इंसान बैठकर रोता रहेगा कि जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन सफल सोच वाला इंसान कहेगा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अब मुझे कुछ नया रास्ता खोजना होगा। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि सफल लोग समस्या को अंत नहीं मानते, बल्कि एक नई शुरुआत करने का अवसर मानते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, सफल लोग हमेशा सफल होते रहते हैं, और जो एक मामूली इंसान होता है जो समस्या को देखकर निराश हो जाता है, वो बैठा का बैठा ही रह जाता है। साथियों आपको बताऊं दोस्तों, तो सफल लोग असफलता से भी नहीं डरते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि असफलता हर बड़े इंसान की कहानी का हिस्सा रही है। कोई भी इंसान बिना गिरने के चलना नहीं सीखता दोस्तों। लेकिन फर्क यहाँ ये आता है कि कुछ लोग एक हार के बाद रुक जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसी हार से सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। दोस्तों सफल लोग जो होते हैं, वो असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देते। वे कहते हैं कि मैं हारा जरूर हूँ, लेकिन खत्म नहीं हुआ हूँ, मैं फिर से कोशिश करूंगा। यही सोच श्रोता साथियों उन्हें दोबारा खड़ी करती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो इस कार्यक्रम को सुन रहे युवा साथियों, आपसे मैं यही कहना चाहूंगी कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती से कुछ नहीं सीखना जरूर गलत है। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम में मेरी आपसे बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं साथियों एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में, और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, सफल लोगों की पहचान आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कर रहे हैं और वे सफल होने के लिए किस तरीके की सोच रखते हैं ये भी हम जान रहे हैं। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि सफल लोग समस्याओं से नहीं डरते बल्कि समाधान से जुड़ते हैं। सफल लोग असफलता से भी नहीं डरते हैं। अब यही अगर आपको बताएं श्रोता साथियों, तो सफल लोग जो होते हैं वो बड़े सपने देखने से भी नहीं डरते। यानी कि हमने देखा है कि बहुत से लोग अपने सपनों को इसलिए छोटा कर लेते हैं क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन श्रोता साथियों, सफल लोग दूसरों की हंसी से नहीं डरते क्योंकि वे ये जानते हैं कि लोग सफल होने पर भी उनका मजाक उड़ाएंगे और असफल होने पर भी उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सफल लोग ये भी जानते हैं कि जो लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन वही लोग तालियां भी बजाएंगे। साथियों, सफल लोग अपनी परिस्थितियों से बड़े सपने देखते हैं। यानी कि गरीबी हो सकती है, संसाधन कम हो सकते हैं, मदद करने वाला कोई नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों, अगर सोच बड़ी है तो इंसान रास्ता बना ही लेता है, ऐसी सोच वे रखते हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि समय दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। ऐसे में सफल लोग समय को खर्च नहीं करते बल्कि समय का निवेश करते हैं। जब बाकी लोग दोस्तों सिर्फ शिकायतों में समय बिताते हैं, तब सफल लोग सीखने में, मेहनत करने में और खुद को बेहतर बनाने में समय लगाते हैं। इसी कारण से धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगती है और वे आगे ही बढ़ते जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, सफल लोग कभी ये नहीं सोचते कि अब मुझे सब कुछ आ गया है। वे हमेशा सीखते रहते हैं नई बातें, नए अनुभव और नई तकनीक। वे खुद को लगातार श्रोता साथियों बेहतर बनाते रहते हैं क्योंकि वे ये जानते हैं कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी तरक्की भी रुक जाती है। तो दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगी कि किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों को सुनना और अनुभवों से सीखना, ये सब सफलता की सीढ़ियां हैं और इस बात को सफल लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि जब पूरी दुनिया आपको कमजोर समझती है, तब भी श्रोता साथियों, अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो यही भरोसा आपको जीत तक ले जाएगा। सफल लोग हर समय दूसरों की मंजूरी का इंतजार नहीं करते बल्कि वे अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। कई बार रास्ता मुश्किल होता है साथियों, कोई साथ हमारा नहीं देता है, लोग बातें भी बनाते हैं, लेकिन सफल लोग अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाते क्योंकि वे जानते हैं कि अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगा तो दुनिया क्यों ही करेगी। इसलिए श्रोता साथियों, सफल होने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास रखना। क्योंकि जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफल होने से

नहीं रोक सकती। तो साथियों, कहना चाहूंगी कि सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वे बस अलग तरीके से सोचते हैं। वे हार में भी सीख देखते हैं, समस्या में भी अवसर को देखते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर दोस्तों हम भी अपनी सोच बदल लें तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। याद रखिए, सफलता पहले सोच में आती है फिर जीवन में। इसी उम्मीद और सकारात्मक संदेश के साथ दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। अंत में आपसे यही कहूंगी कि अपने सपनों को छोटा मत होने दीजिए, मेहनत करिए, सीखते रहिए और उड़ान भरते रहिए, क्योंकि दोस्तों सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें सच करने की हिम्मत रखते हैं। जी हाँ साथियों, इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। जाते जाते आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में, तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही और गीत संगीत रहे वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी मेरी आपसे अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए प्रेरणादायक विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनू, आ लक्षण आपने अपने मई देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा थकी बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई बोनो, घर की निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि आज का एक अच्छा निर्णय आने वाले कल को कैसे बदल सकता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि जीवन में हर दिन हमें छोटे बड़े कई फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ फैसले तुरंत असर दिखाते हैं जबकि कुछ का प्रभाव वर्षों तक हमारे जीवन में दिखाई देता है।
0: जी हाँ।
1: अक्सर लोग मनीषा सोचते हैं कि एक छोटे से निर्णय से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन श्रोता साथियों सच तो यह है कि जीवन की बड़ी सफलताएं और बड़ी असफलताएं दोनों ही छोटे बड़े निर्णयों पर ही खड़ी होती है।
0: जी हाँ।
1: आज हम जानेंगे कार्यक्रम में इस विशेष पर विस्तार से कि कुछ प्रेरणादायक ऐसे उदाहरण भी सुनेंगे जिसके माध्यम से सही समय पर लिया गया निर्णय कैसे व्यक्ति के जीवन को बदलता है और उसका प्रभाव परिवार और समाज पर कैसे पड़ता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं, आज का एक अच्छा निर्णय आने वाले कल को कैसे बदल सकता है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन अनेक छोटे बड़े निर्णयों का परिणाम है। हम प्रतिदिन अनगिनत निर्णय लेते हैं श्रोता साथियों, कब उठना है, क्या करना है, किससे मित्रता करनी है, समय का सही उपयोग कैसे करना है, कौन सा कार्य पहले करना है, किस आदत को अपनाना है और कौन सी बुरी आदत को छोड़ना है। श्रोता साथियों, देखने में ये निर्णय छोटे लग सकते हैं, लेकिन यही निर्णय है वो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व और भविष्य के जीवन को नई दिशा देते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है श्रोता साथियों कि आज का सही निर्णय कल की सफलता की नींव बनता है। वास्तव में जीवन में सफलता अचानक नहीं मिलती है, बल्कि यह अच्छे निर्णयों, निरंतर मेहनत और सही समय का परिणाम होती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि निर्णय केवल हाँ या ना कहना नहीं होता, निर्णय वह दिशा है जिसे हम अपने जीवन के लिए चुनते हैं। हर सुबह समय पर उठना भी एक निर्णय है, बच्चों को स्कूल भेजना भी एक निर्णय है, गुस्से की जगह धीर्य चुनना भी एक निर्णय है।
0: बिल्कुल,
1: पेड़ लगाना, पानी बचाना, मेहनत करना, किसी की मदद करना, ये सभी अच्छे निर्णय है। इन्हीं छोटे छोटे निर्णयों से हमारा भविष्य बनता है।
0: छोटा
1: साथियों, हर निर्णय अच्छा नहीं होता, अच्छा निर्णय वही है जो सही जानकारी पर आधारित हो, जिससे किसी का नुकसान न हो, जो लंबे समय तक लाभ पहुंचाएगा और जो नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के साथ लिया जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी होगा।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि आज हम सही दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं तो आने वाले कल में निश्चित रूप से हम बेहतर बन सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज के समय में श्रोता साथियों, जब युवाओं के सामने अनेक अवसर या चुनौतियां आती हैं, तब सही निर्णय लेने की क्षमता है वो पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: जी हाँ।
0: इसीलिए समझना आवश्यक है कि आज का एक अच्छा निर्णय किस प्रकार हमारे कल को बदल सकता है। साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि निर्णय का अर्थ किसी परिस्थिति में सोच समझकर उचित विकल्प का चयन करना है।
1: बिल्कुल,
0: जीवन में हर व्यक्ति के सामने कई विकल्प आते हैं श्रोता साथियों, इन विकल्पों में से सही निर्णय को चुनना ही निर्णय कहलाता है।
1: बिल्कुल,
0: निर्णय केवल श्रोता साथियों बड़े कार्यों तक सीमित नहीं होता है। समय पर पढ़ाई करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ईमानदारी से कार्य करना, सकारात्मक सोच रखना और अच्छे लोगों का साथ चुनना भी श्रोता साथियों हमारे लिए एक अच्छे निर्णय हो सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, यदि कोई व्यक्ति आज से रोज थोड़ा सा व्यायाम करने का निर्णय लेता है, संतुलित भोजन खाता है और नशे से दूर रहता है, तो कुछ महीनों बाद उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार सोचता रहे कि कल से शुरू करूंगा, तो वही टालोम टोल धीरे धीरे बीमारी का कारण बन सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए स्वास्थ्य भी हमारे निर्णयों पर ही निर्भर करता है। एक माता पिता ने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अपनी बेटी को पढ़ाने का निर्णय लिया।
0: जी हाँ।
1: गांव के कुछ लोगों ने कहा कि लड़की को इतना पढ़ाकर क्या ही होगा, लेकिन माता पिता अपने निर्णय पर अडिग रहे। कुछ वर्षों बाद वही बेटी शिक्षक बनी और पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी और
0: गांव
1: की कई लड़कियां उससे प्रेरित होकर पढ़ने लगी। श्रोता साथियों, एक निर्णय ने केवल एक जीवन नहीं बल्कि कई जीवन बदल दिए। हर व्यक्ति के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क इतना है कि कोई समय का सही उपयोग करने का निर्णय लेता है और कोई उसे यूं ही गवा देता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सीखता रहता है, वही आगे चलकर बड़ा बदलाव देख पाता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि एक अच्छा निर्णय होता है वो सोच विचार करके लिया जाता है, दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखता है श्रोता साथियों, नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है और स्वयं और समाज दोनों के हित में होता है।
1: बिल्कुल,
0: आत्मविश्वास और जिम्मेदारी से आगे बढ़ता है व्यक्ति। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि जीवन एक यात्रा है, इस यात्रा में हर निर्णय एक मोड़ की तरह होता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि मोड़ सही दिशा में लिया जाए तो मंजिल तक पहुँचना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर अंजलि जी हम जाने कि यदि कोई विद्यार्थी आज नियमित पढ़ाई करने का निर्णय लेता है तो भविष्य में वह अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है।
1: जी हाँ।
0: और अपने सपनों को पूरा कर सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, यदि आज एक परिवार यह निर्णय ले कि प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, पानी बचाएंगे और हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाएंगे, तो उसका प्रभाव केवल उनके घर तक सीमित नहीं रहेगा, धीरे धीरे पूरा गांव स्वच्छ और हरा भरा बन सकता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे निर्णयों से ही शुरू होते हैं, इसलिए आज के कार्यक्रम में हम इस विषय पर जो बातचीत कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: जी हाँ।
1: और जैसा कि मनीषा, कार्यक्रम में हमारे ये दस्तूर है कि हम बीच बीच में हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन के गीत सुनवाते हैं, ताकि उन्हें तो क्यों ना यहाँ पर भी बातचीत के दौरान एक प्यारा सा गीत हम हमारे दोस्तों को सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि किस तरीके से एक निर्णय हमारे जीवन को बदल देता है। श्रोता साथियों, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, फर्क केवल इतना है कि कोई समय का सही उपयोग करने का निर्णय लेता है तो कोई उसे यूं ही गवा देता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सीखता रहता है वही आगे चलकर बड़ा बदलाव दिखता है।
1: बिल्कुल,
0: लिखते हैं हम मनीषा कि यदि आज एक परिवार यह निर्णय ले कि वह प्लास्टिक का कम उपयोग करेगा तो पानी बचेगा, जब ग्राम सभा में लोग ईमानदारी से भाग लेने का निर्णय लेते हैं, जब महिलाएं अपनी बात खुलकर रखने का निर्णय लेती है, जब युवा नशे से दूर रहकर कौशल सीखने का निर्णय लेते हैं, तब पूरे समाज का विकास तेजी से होता है।
1: जी हाँ।
0: समाज का भविष्य किसी एक बड़े नेता से नहीं छूटता साथियों, बल्कि लाखों लोगों के अच्छे निर्णयों से बनता है। हम देखते हैं कि निर्णय लेने से पहले हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि जल्दबाजी में हमें फैसला नहीं लेना होता है। जिस भी विषय पर हम निर्णय ले रहे हैं उसकी सही जानकारी हमें होनी चाहिए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में बहुत सी बार हम गलत निर्णय ले बैठते हैं। इसलिए जिस भी विषय का हम निर्णय लेना चाह रहे हैं उस विषय की जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ हमारे आसपास में जो भी व्यक्ति हैं, कोई शिक्षित व्यक्ति हो, बड़े बुजुर्ग हो गए, उनके अनुभव की सलाह लेकर हमें निर्णय लेना चाहिए। बहुत सी बार हम देखते हैं कि हम स्वयं ही निर्णय लेते हैं, फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये निर्णय हमने गलत ले लिया। पास में जब कोई लोग हमारे रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, तो वो हमें कहते हैं हमसे पूछा होता हम तुझे सही जानकारी देते। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा निर्णय हम ले रहे हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है तो उसके लिए हमें बड़े बुजुर्गों से राय अवश्य लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ केवल भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना है श्रोता साथियों, निर्णय के भविष्य के परिणामों के बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है कि आज अगर हम ये निर्णय लेंगे तो उसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे निर्णय जिस पर बार बार हमें पछतावा हो वो भी हमें नहीं करना है। हमें ऐसा निर्णय लेना है जिसमें हमारे परिवार का सुख हो, हमारे देश और समाज का सुख छिपा हो। सिर्फ हमारे स्वार्थ के लिए अगर हम निर्णय लेते हैं तो ये हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में सही निर्णय का क्या महत्व है, तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि शिक्षा है वो जीवन का आधार है।
0: बिल्कुल।
1: सही समय पर पढ़ाई शुरू करना, नियमित अभ्यास करना और लक्ष्य निर्धारित कार्य करना हमारे जीवन को बदल सकता है। एक छात्र यदि प्रतिदिन कुछ घंटे मन लगाकर पढ़ाई करे अंजलि जी, तो वह धीरे धीरे मजबूत ज्ञान प्राप्त कर लेता है।
0: जी हाँ।
1: वहीं परीक्षा के समय केवल कुछ दिनों की पढ़ाई लंबे समय की तैयारी का स्थान नहीं ले सकती। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि आज लिया गया अध्ययन का निर्णय श्रोता साथियों भविष्य में रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता का कारण बन सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जब भी हम कोई निर्णय लें तो हम बहुत सारी बातों का ध्यान रखें। आज के लिए हम श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कि हम क्या जीवन में ऐसे निर्णय लें जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, रोज कुछ नया सीखने का निर्णय लें, समय की कद्र करें, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश करें, नशे से दूर रहें, पर्यावरण की रक्षा करें, परिवार के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें, गाँव के विकास के जो कार्य हैं उसमें आपको भाग लेना चाहिए, अपनी आय का कुछ हिस्सा बचत के लिए निकालना चाहिए, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और किसी जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, इनमें से केवल एक निर्णय भी अगर आप ले लेते हैं तो आपका जो जीवन है उसमें आप सकारात्मक बदलावों को देखना शुरू करेंगे। और जब एक बार सकारात्मक बदलाव हमारे जीवन में आएगा मनीषा, तो धीरे धीरे हमें हमारे जीवन की दूसरी जो चीजें हैं उन्हें बदलने का भी मौका मिल पाएगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। यदि व्यक्ति आज से संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और स्वच्छता को अपनाने का निर्णय लेता है तो वह अनेक बीमारियों से बच सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसके विपरीत यदि व्यक्ति धूम्रपान, शराब, नशे या असंतुलित जीवन शैली को अपनाता है तो हम देखते हैं कि भविष्य में वह गंभीर समस्याएं उसे उत्पन्न हो सकती हैं।
0: जी जी।
1: साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहूंगी कि समय का भी हमें सही उपयोग करना है। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। बीता हुआ समय श्रोता साथियों कभी वापस नहीं आता। यदि आज हम समय का सदुपयोग करते हैं और भविष्य में हमें सफलता आसानी से मिल सकती है। समय का सही उपयोग करने वाले लोग अंजलि जी हम देखते हैं कि हमेशा वे लक्ष्य निर्धारित करके रखते हैं, कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और आलस्य से बचते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, अपने कार्य करने की जो समय शैली है उसको निर्धारित करते हैं, साथ ही हम देखते हैं कि वो निरंतर सीखते भी रहते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, जीवन बदलने के लिए हमेशा बड़े अवसरों का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। कई बार एक छोटा सा निर्णय जैसे कि समय पर उठना, एक किताब पढ़ना, एक नई कला सीखना, किसी की मदद करना या अपनी गलती स्वीकार करना आने वाले वर्षों की दिशा बदल देता है।
1: जी हाँ,
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि भाग्य केवल संयोग से नहीं बनता, वह हमारे निर्णय और निरंतर प्रयास से बनता है। भविष्य अचानक नहीं बदलता है, वह हर दिन लिए गए हमारे छोटे छोटे फैसलों की ईंटों से धीरे धीरे तैयार होता है। आज यदि हम यह सोचें कि ईमानदारी, अनुशासन और सकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा हम बना लेंगे तो आने वाला समय निश्चित रूप से अधिक सुरक्षित और सुखद और सफल होगा। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं मनीषा, जब उसे दो रास्तों में से एक चुनना होता है। वही चुनाव उसके व्यक्तित्व, परिवार और समाज की दिशा तय करता है।
1: हाँ।
0: निर्णय लेते समय केवल आज की सुविधा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के हित के बारे में भी सोचें। आज हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हर दिन कम से कम एक ऐसा निर्णय जरूर लेंगे जो हमें बेहतर इंसान बनाए, हमारे परिवार को मजबूत करे और हमारे समाज को आगे बढ़ाए, क्योंकि उज्जवल भविष्य किसी चमत्कार से नहीं छूटता साथियों, बल्कि आज के लिए गए एक समझदारी भरे निर्णय से बनता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि करियर चुनना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है। यदि व्यक्ति अपनी रुचि, योग्यता, क्षमता को समझकर करियर चुनता है तो हम देखते हैं कि वह लंबे समय तक संतुष्ट और सफल रहता है।
0: बिल्कुल,
1: दूसरों की नकल करके लिया गया छूटता साथियों निर्णय कई बार हम देखते हैं कि असफलता और निराशा का कारण भी बन सकता है। इसलिए करियर का निर्णय छूटता साथियों में सोच समझ कर लेना है। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि अच्छी संगति होती है उसका भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: मनुष्य अपने वातावरण और साथियों से बहुत कुछ सीखता है अंजलि जी। यदि श्रोता साथियों हम मेहनती हैं तो हमारे विचार और व्यवहार भी अच्छे बनते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वहीं गलत संगति को हम गलत आदतें जैसे हैं कि हमारे समय की बर्बादी को करते हैं, बर्बादी को बढ़ाते हैं, हमें गलत रास्तों पर ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि उससे हमारी जिंदगी है वो खराब हो सकती है। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमारे जीवन में हमें अच्छे लोगों से संवाद करना है और अच्छे लोगों की संगति हमें रखनी है।
0: जी हाँ मनीषा, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हमारे आज के फैसले ही हमारे आने वाले कल की तस्वीर बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल या असफल नहीं बनता, उसके रोज के विचार, आदतें और निर्णय धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व, रिश्तों, स्वास्थ्य और भविष्य को आकार देते हैं।
1: जी हाँ,
0: इसलिए ये भी मत सोचिए कि मेरे एक फैसले से क्या ही बदल जाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बदलाव हमेशा एक छोटे से कदम से शुरू होता है। आज यदि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने, अपने बुजुर्गों का सम्मान करने, पर्यावरण की रक्षा करने, ईमानदारी से काम करने, समय का सदुपयोग करने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का निर्णय लेते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी उसे लाभान्वित होंगी।

0: प्राचीन निर्णय एक ऐसी विरासत बन जाते हैं जो वर्षों तक लोगों के जीवन को उजाला देते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से आज का एक अच्छा निर्णय आने वाले कल को कैसे बदल सकता है, इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे, आज का एक अच्छा निर्णय आने वाले कल को कैसे बदल सकता है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि जीवन हमें हर दिन अनेक अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों का लाभ श्रोता साथियों हमें तभी मिलता है जब हम सही निर्णय को सही समय पर लेते हैं। मनुष्य का जीवन केवल भाग्य के सहारे नहीं चलता है, बल्कि उसके निर्णय ही उसके भविष्य की दिशा तय करते हैं। आज हम जो सोचते हैं साथियों, जैसा व्यवहार करते हैं और जो निर्णय लेते हैं, वही आने वाले वर्षों में हमारे व्यक्तित्व, परिवार, करियर और समाज को प्रभावित करते हैं।
1: जी जी।
0: अक्सर अंजलि जी हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन श्रोता साथियों वास्तव में समय अपने आप कुछ नहीं बदल सकता।
1: जी जी।
0: समय के साथ हमारे द्वारा लिए गए निर्णय भी परिवर्तन का कारण बनते हैं। यदि किसान सही समय पर अच्छी गुणवत्ता वाला बीज बोता है, खेती की देखभाल करता है और मेहनत करता है, तो कुछ महीनों बाद श्रोता साथियों उसे अच्छी फसल प्राप्त होती है। यदि श्रोता साथियों लापरवाही करे तो भविष्य में पछताना पड़ सकता है। यही बात हमारे जीवन पे भी श्रोता साथियों लागू होती है।
1: बिल्कुल मनीषा, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को ये बात समझाना चाहेंगे कि बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। गांव के अधिकतर लोग खेती करके अपना जीवन चलाते थे। हर साल बारिश के भरोसे खेती होती थी। यदि बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, लेकिन यदि बारिश कम होती तो पूरे गांव में परेशानी फैल जाती।
0: बिल्कुल।
1: लोग कर्ज लेते, कई परिवारों को अपने पशु बेचने पड़ते और कुछ लोगों को रोजगार की तलाश में शहर चले जाते थे। उसी गाँव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, परिवार बड़ा था, जमीन कम थी और आमदनी सीमित। फिर भी रामलाल की एक आदत थी कि वह हर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता।
0: बिल्कुल।
1: एक दिन कृषि विभाग के अधिकारी गांव में आए। उन्होंने किसानों को वर्षा जल संरक्षण, अच्छी गुणवत्ता की बीज, मिट्टी की जांच और आधुनिक खेती के बारे में जानकारी दी। अधिकांश किसानों ने कहा कि हमारे बाप दादा जैसी खेती करते आए हैं वैसे ही करेंगे, नई बातें हमारे बस की नहीं है। लेकिन रामलाल ने उस दिन एक निर्णय लिया कि मैं बदलाव से डरूंगा नहीं, बल्कि बदलाव से सीखकर आगे बढ़ूंगा।
0: बिल्कुल।
1: उसने अपनी छोटी सी बचत से खेत के किनारे एक छोटा सा पानी रोकने का गड्ढा बनाया, मिट्टी की जांच करवाई, सलाह के अनुसार बीज बदले और पानी की बर्बादी रोकने के लिए सिंचाई का तरीका भी बदला।
0: बिल्कुल।
1: गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता इतने से छोटे किसान बनेंगे वैज्ञानिक, तो कोई कहता इतना खर्च करके क्या मिलेगा। रामलाल मुस्कुराकर केवल इतना कहता, आज का सही निर्णय कल जवाब देगा। श्रोता साथियों, कुछ महीने बाद बारिश कम हुई, अधिकांश किसानों की फसल सूखने लगी, लेकिन रामलाल के खेत में पानी बचा हुआ था। उसकी फसल पूरी तरह तो नहीं, लेकिन अच्छी बच गई। उसने अनाज भी बेचा और अपने परिवार का खर्चा भी आराम से चलाया। अब वही लोग जो पहले हंसते थे उसके पास सलाह लेने आने लगे।
0: जी हाँ।
1: रामलाल ने किसान से बदला नहीं लिया, उसने सबको अपने खेत पर बुलाया, अपनी गलतियां भी बताई, अपनी सीख भी साझा की। अगले साल पूरे गांव ने मिलकर वर्षा जल संरक्षण शुरू किया, मिट्टी की जांच करवाई और खेती के नए तरीके भी अपनाए। श्रोता साथियों, धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी, किसानों की आमदनी भी बढ़ी, पलायन भी कम हुआ और मनीषा गांव के जो लोग हैं वो दूसरे गांवों के लिए एक मिसाल बन गए।
0: बिल्कुल।
1: कुछ वर्षों बाद जब जिले के अधिकारी गांव का दौरा करने आए तो उन्होंने पूछा, इस बदलाव की शुरुआत किसने की। गांव के बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, इस बदलाव की शुरुआत किसी बड़े नेता या बड़ी योजना से नहीं हुई है, यह शुरुआत एक साधारण किसान ने उसके छोटे निर्णयों से शुरू की है, जिसने डर के बजाय सीखने का रास्ता चुना।
0: जी हाँ।
1: उस दिन रामलाल ने गांव के बच्चों से कहा कि बेटा, जीवन में हमेशा बड़े मौके नहीं मिलते, लेकिन छोटे छोटे सही फैसले हर दिन मिलते हैं। जो व्यक्ति उन फैसलों को समझदारी से लेता है, वही अपना और दूसरों का भविष्य बदल सकता है। तो श्रोता साथियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा किसी बड़े चमत्कार से नहीं आता, वो एक छोटी सोच, एक साहसिक निर्णय और लगातार किए गए प्रयासों से आता है। इसलिए आज ऐसा कोई एक अच्छा निर्णय जरूर लीजिए जो आपके आने वाले कल को बेहतर बनाएगा, और वही छोटा कदम भविष्य में भी आपकी बड़ी सफलता बन सकता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन उज्जवल भविष्य केवल श्रोता साथियों इच्छाओं से नहीं बनता।
1: जी जी,
0: उसके लिए आज सही कदम उठाने पड़ते हैं। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि यदि कोई विद्यार्थी आज मेहनत करने का निर्णय लेता है तो भविष्य में उसके लिए अवसरों की कमी नहीं रहती।
1: जी जी,
0: यदि कोई किसान नई तकनीक अपनाने का निर्णय लेता है तो वो उसकी उपज है उसको बढ़ा सकता है। यदि कोई युवा है कोई नया कौशल सीखने का प्रयास या निर्णय लेता है श्रोता साथियों, तो उससे हम देखते हैं कि उसके जीवन में कभी रोजगार की संभावना है वो कम नहीं होती। इसी प्रकार श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि आज का लिया गया एक छोटा सा सकारात्मक निर्णय आने वाले वर्षों में बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। इसीलिए हमें कभी भी छोटे निर्णयों को लेकर श्रोता साथियों हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हम अंजलि जी देखते हैं कि भविष्य की मजबूत इमारत ही छोटे छोटे निर्णयों की नींव होती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आज यदि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने, अपने बुजुर्गों का सम्मान करने, पर्यावरण की रक्षा करने, ईमानदारी से काम करने और समय का सदुपयोग करने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने का निर्णय लेते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी उससे लाभान्वित होंगी।
0: बिल्कुल,
1: अच्छे निर्णय एक ऐसी विरासत बन जाते हैं जो वर्षों तक लोगों के जीवन में उजाला फैलाते हैं। याद रखिए कि परिस्थितियां हमारे अनुसार हमेशा नहीं रहती हैं।
0: जी हाँ,
1: लेकिन उन परिस्थितियों में लिया गया हमारा निर्णय पूरी कहानी बदल सकता है। कठिन समय में धैर्य चुनना, असफलता के बाद दोबारा प्रयास करना, गलत रास्ते की बजाय सही रास्ते का चयन करना, स्वार्थ की जगह सहयोग का भाव रखना, यही वे निर्णय है श्रोता साथियों जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देते हैं। आज से हम अपने हर निर्णय को केवल अपनी सुविधा के आधार पर नहीं बल्कि उसके दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए लें, क्योंकि जब व्यक्ति सही निर्णय लेता है तो उसका परिवार मजबूत होता है, परिवार मजबूत होता है तो समाज सशक्त बनता है, और जब समाज सशक्त बनता है मनीषा, तभी एक विकसित संवेदनशील और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण होता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों हमेशा निर्णय जो हम जीवन में लेते हैं उन्हें सोच समझ कर हमें लेना होता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर हम बात करें कि आर्थिक जीवन है वो हमारे लिए किस प्रकार जरूरी है, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि कमाई जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए सही उपयोग करना।
1: बिल्कुल,
0: यदि व्यक्ति आज से ही बचत करने और अनावश्यक खर्चों से बचने लगे श्रोता साथियों, तो हम देखते हैं कि वो भविष्य

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान ही चुके हैं, यही आपको कहना चाहेंगे कि जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है। यह अवसर हमेशा किसी बड़ी उपलब्धि के रूप में नहीं आता, बल्कि कई बार एक साधारण से निर्णय के रूप में हमारे सामने खड़ा होता है। फर्क केवल इतना होता है कि कोई व्यक्ति उस अवसर को पहचान लेता है और कोई उसे अनदेखा कर देता है।
1: बिल्कुल,
0: सब बीत जाने के बाद वही छोटा सा निर्णय सफलता और पछतावे के बीच की दूरी तय कर देता है। श्रोता साथियों, यह भी सच है कि सही निर्णय लेने का मतलब यह नहीं है कि रास्ता हमेशा आसान होगा। कई बार सही फैसले लेने पर शुरुआत में कठिनाइयां आती हैं, लोग आपका विरोध करते हैं, आपकी बात पर भरोसा नहीं करते हैं, आपका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन इसका प्रभाव हमारी सोच पर, हमारी ईमानदारी पर और हमारी दृष्टि की जो चीजें हैं उन पर आधारित होता है। तो समय स्वयं का महत्व सिद्ध करता है, इसलिए परिस्थितियों से घबराने के बजाय अपने उद्देश्य को हमें बनाए रखना है और उसमें हमें धैर्य विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का सही निर्णय केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उसका प्रभाव पूरे समाज पर भी पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: जब कोई नागरिक नियमों का पालन करने, स्वच्छता बनाए रखने, पेड़ लगाने, जल संरक्षण करने, बेटियों की शिक्षा में समर्थन देने, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लेता है श्रोता साथियों, तो वह पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत करता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि समाज का विकास वो केवल संस्कारों की योजनाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि जागरूकता नागरिकों के निर्णयों से भी होता है साथियों।
0: जी जी।
1: यदि प्रत्येक व्यक्ति यह निश्चय कर ले श्रोता साथियों कि वह अपने आसपास सादगी फैलाएगा, बिजली की बचत करेगा, पानी की बर्बादी नहीं करेगा, जरूरतमंदों की सहायता करेगा, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि धीरे धीरे पूरा वातावरण वो बदल सकता है। बड़े परिवर्तन अंजलि जी हम कह सकते हैं कि हमेशा छोटे छोटे संकल्पों से ही जन्म लेते हैं।
0: जी हाँ मनीषा, एक बेहतर समाज का निर्णय केवल सरकारी योजनाओं या बड़े साधनों से नहीं होता, बल्कि उन लोगों से होता है जो अपने दैनिक जीवन में जिम्मेदारी निभाने का निर्णय लेते हैं। जब माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने का संकल्प लेते हैं, जब युवा अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं, जब किसान नई जानकारी अपनाने का साहस करते हैं, जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाती है और जब हर नागरिक अपने कर्तव्यों को समझ कर उन्हें निभाता है, तब विकास केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर दिखाई देता है। इसलिए आज का दिन केवल बिताने वाला एक और दिन नहीं बने, बल्कि आपके जीवन की एक नई शुरुआत का दिन बने।
1: बिल्कुल,
0: आपके भीतर आपको झांकना होगा और सोचना होगा कि ऐसा कौन सा निर्णय है जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं। हो सकता है कि वही निर्णय आपकी सफलता, आपके परिवार की खुशहाली और आपके समाज के विकास की पहली सीढ़ी बन जाए।
1: बिल्कुल,
0: विश्वास अपने मन में हमेशा बनाए रखें श्रोता साथियों कि भविष्य किसी और के हाथों में नहीं बल्कि हमारे अपने निर्णयों और कर्मों में छिपा होता है। यही सोच, सकारात्मक इरादे और हम कह सकते हैं कि निर्णय लेने की जो चीजें है उनको मजबूत बनाने का कार्य करती है। इसलिए हमेशा हमें हमारे जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाना होगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति है वो उसके युवा होते हैं। आज के युवा जो निर्णय लेते हैं श्रोता साथियों, वही आने वाले वर्षों में देश की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि युवा अपना समय केवल मनोरंजन और दिखावे में व्यतीत करने के बजाय अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाने में लगाएं श्रोता साथियों, तो हम देखते हैं कि उनके अंदर ज्ञान, कौशल, चरित्र और व्यक्तित्व का विकास ही वो बढ़ता है। तो समाज में हम देखते हैं कि वो लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि युवाओं को यह समझना होगा कि सफलता केवल बड़े सपने देखने तक नहीं मिलती, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए रोज छोटे छोटे निर्णय लेने पड़ते हैं। समय पर उठना, नियमित अध्ययन करना, नई तकनीकी सीखना, अच्छे लोगों का साथ चुनना, अनुशासन बनाए रखना और अपने लक्ष्य पर लगातार काम करते रहना। श्रोता साथियों, ये सभी निर्णय मिलकर हमारे भविष्य की सफलताओं को सफलता ही उनके लिए मार्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और हमारे जीवन में जो मार्ग होते हैं उनको खोलता है।
0: बिल्कुल मनीषा, किसी भी इंसान की पहचान केवल उसके सपनों से नहीं होती है, बल्कि उन निर्णयों से होती है जिन्हें वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए चुनता है। इच्छा तो हर किसी के मन में होती है कि उसका जीवन बेहतर बने, परिवार खुशहाल रहे, समाज आगे बढ़े, लेकिन यह बदलाव केवल सोचने से नहीं आता बल्कि ही सही समय पर सही दिशा में उठाए गए कदमों से आता है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए हर निर्णय को अपने भविष्य की नींव समझकर लेना चाहिए। यह भी याद रखिए श्रोता साथियों कि जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। यदि किसी निर्णय से अपेक्षित परिणाम न मिले तो उसे अपनी हार नहीं बल्कि सीख का अवसर मानिए। समझदारी इसी में ही है श्रोता साथियों कि हम हर अनुभव से सीखें, अपने दृष्टिकोण को बेहतर बनाएं। अगर कुछ हमारे जीवन में गलत होता है तो उसे भूलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अगला कदम पहले से अधिक आत्मविश्वास और विवेक के साथ बढ़ाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: आगे बढ़ने वाले लोग श्रोता साथियों कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देते बल्कि अपने निर्णयों को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं।
1: जी हाँ।
0: हमारे परिवार, गांव और समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो केवल समस्याओं की चर्चा न करें बल्कि समाधान का हिस्सा बनने का साहस रखें। यदि हर व्यक्ति मनीषा अपने हिस्से की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने का संकल्प ले ले तो छोटी छोटी पहल मिलकर बड़े बदलाव का आधार बन सकती है।
1: जी हाँ।
0: और यही सामूहिक सोच किसी भी समुदाय की सबसे बड़ी ताकत होती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोता साथियों जीवन के हर मोड़ पर जल्दबाजी नहीं बल्कि समझदारी को चुनिए, निराशा नहीं बल्कि उम्मीद को अपनाइए और केवल अपने हित के लिए नहीं बल्कि समाज के हित की सोचते हुए निर्णय लें, क्योंकि जागरूक व्यक्ति का सही निर्णय केवल उसका भविष्य नहीं बदलता बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नई संभावनाओं के द्वार खोल देता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: बिल्कुल। तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारे कार्यक्रम का पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारशर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
0: नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट कशिश पाराशर। स्वागत है साथियों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपके साथ बहुत अच्छा चलता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 2 PM तक। और इसी बीच श्रोता साथियों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। साथियों जब सुबह की शुरुआत कार्यक्रम में गीतों के साथ हो जाती है तो मनोरंजन का फायदा ही एक अलग होता है, और मनोरंजन करना तो हमारा अधिकार है साथियों। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से हम ढेर सारी फरमाइशों के गीतों के साथ मनोरंजन करेंगे। अब जैसा कि सुबह की 11 बज चुके हैं, ढेर सारी फरमाइशें कार्यक्रम के माध्यम से आ चुकी हैं, तो मैं बढ़ना चाहूँगी पहली फरमाइश की गीत की ओर। साथियों पहली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दुलापुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है, आपको बताना चाहूँगी, गीत के बोल हैं श्रोता साथियों बोलना हल्के हल्के। फिल्म का नाम है झूम बराबर झूम। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इरकास, नरगिस खातून जी। और भी हमारे श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूंगी साथियों, जुड़ रहे हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कटवासरा, सचिन कटवासरा, सतीश योगेश युधव कटवासरा जी, सुरेश चुरेसा, सरोज चुरेसा फरुखाबाद UP से जुड़ना चाह रहे हैं। और भी हमारे दोस्त जो हैं इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। मैं आपको नाम बताना चाहूंगी दोस्तों, जुड़ रहे हैं नवाशहर से सुरेंद्र सानू, अनिता सांधु, रोहित सांधु, रितेश सांधु, शिक्षा सांधु, प्रतीक्षा सांधु, मेक्स जी, जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं बोलना हल्के हल्के। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: देखो ताजमहल,
1: लाल पत्थर का ताज।
0: ताज ही है, किसने लाल पोत दिया है?
1: इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं?
2: हुमायूं का मकबरा। इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे ले जाके ताज दिखाऊं। सॉरी,
1: आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल।

0: बस बेशुमार मोहब्बत।
1: तो फिर कबूल।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था और इसी गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूंगी अगली फरमाइश की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे भी चाहिए पटेल नगर मोलत से। फिल्म का नाम है, आपको बताना चाहूंगी साथियों, जुल्म। गीत के बोल है, दर्द दिल दर्द जिकर। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं मलोट से, रमेश कुमार जजोरिया, गितरन जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजी जजोरिया जी। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो सुनना चाहते हैं इसी गीत को, नाम बताना चाहूंगी। दोस्तों जुड़ रहे हैं गंजुड़वारा से शमशुल कमर राय, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, कलीम अंसारी जी। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, नाम बताना चाहूंगी साथियों। जुड़ना चाह रहे हैं पंडरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशा सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, बताना चाहूंगी श्रोता साथियों। जुड़ रहे हैं हमारे बीच में पंडरपुर से ही जाखिल मुलाणी, सुबह सलमा, मुमताज, दिलसाद, नसर भी, बानुबी, बादशाह मुलाणी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, दर्दे दिल दर्दे जिकर, दिल में जगाया आपने। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: सिर्फ कोलगेट मैक्स फ्रेश में है। आईसी कूलिंग क्रिस्टल्स जो दे मैक्सिमम।
1: नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, दर्द ए जिगर दिल में जगाया आपने। इसी गीत के बाद साथियों फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है गंजू द्वारा से। फिल्म का नाम है बॉर्डर, गीत के बोल हैं तो चलो। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं मोहम्मद यासिन आशमी, बेगम आशमी, तौसीफ आशमी, तैमूर आशमी, कलीम अंसारी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, मलियान सरदना मेरठ से, अनिल जैन, श्याम जैन, मुस्कान मास्टर जी, वीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। बीर शहर से हैं विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव शिंदे। खंडाला से हैं आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त मड़ियाऊ जौनपुर से हैं इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इशरा, अजरा तबस्सुम, नवेद इरशाद। अम्बाला से हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका जी, मन्नत गुरकिरत राहुल, गुरसब्द सिंह राहुल। बुलढाणा महाराष्ट्र से जुड़ रहे भागवत देठे पाटिल, लक्ष्मी देठे पाटिल, दादा देठे पाटिल, सानिका देठे पाटिल, नादुरा से शिवाजी उंगले, राहुल उगले। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं तो चलो, तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश गंज डिडवारा उत्तर प्रदेश से आई है साथियों। फिल्म का नाम है ये वादा रहा, गीत के बोल हैं तू है वही। फरमाइश करता इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर खिल्लू परवेज बेगम, इमरान अनान, नाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव जी और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। आपको बताना चाहूंगी जुड़ रहे हैं मोहाली पंजाब से हैं बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। इसी बीच मंडी बागपत से हैं आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुजान, सादिक अली खान, सादिक अली खान। जलाना शहर से सोमनाथ जादव, गीता जादव, ओम जादव, सुभाष जादव, अनचंदन जादव, एकनाथ जादव, संगीता जादव। नेहरू चौक पैठन से सुरेश जादव, अनीता जादव, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल जादव, बेबी सिया जादव। जुड़ना चाह रहे बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी, अर्जुन अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नितिन, भुवनेश्वरी देवी जी। दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी। खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, बागवत वर्मा, सीमा वर्मा, अभिषेक वर्मा, सचिन, अमित, समरराज, आर्यन आरोही, ईशिका, श्वेता वर्मा जी। नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि जी शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन जी शाह, राजन शाह, सुषमा कपूर जी। कश्मीर से हैं फैजारा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, क्वासिरुद्दीन। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक। और भी हमारे दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। कोका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल, नंदिनी जंगेल। सुकरी कला से अमित शकुन, आरुषिका, आदित्य जंगेल। हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत, लेवप्रीत कौर, कमरजीत कौर। लचनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं तू है वही।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दोस्तों, बताना चाहूंगी रतलाम एमपी से। फिल्म का नाम है पत्थर के फूल, गीत के बोल हैं कभी तो छलिया लगता है। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी और एसपी बाल सुब्रमण्यम सर जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं जगदीश धाकर नायमा, रंजू भाई धाकर, युवराज सिंह धाकर, शिवांगी धाकर जी। इस गीत की और भी फरमाइश करता है जो पसंद करते हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी दोस्तों, बोरखेरा पित्रामल से हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा कुश मूड़त जी। नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे जी। पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजन वर्मा, प्रहलाद वर्मा, ज्योति वर्मा, अमित वर्मा जी। जुड़ना चाह रहे हैं रोहिदास चौक पंडरपुर शहर से सुनीता शिंदे, यशा शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के जी। येताला महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोकेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी गोस्वामी जी। खंडवा से राजेश सेन, रेखा सेन, शुभम, अक्षय सेन। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोम, मानस राज, गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आशीष श्रीवास, ये भी छत्तीसगढ़ से ही जुड़ रहे हैं। गाजियाबाद से हैं एसपी अकेला जी, तेजपाल प्रजापति जी। भवानी नगर पैठन से अरुण धोंगड़े, आरती धोंगड़े, भाऊ साहेब धोंगड़े, गंगासागर धोंगड़े, हर्षवर्धन, अशोक धोंगड़े, राशि कार्तिक, परी धोंगड़े और समस्त परिवार सदस्यगण। मधुबनी बिहार से हैं सबिर परवाना, साहिद अली, जहीद अली जी और शाहिद अली जी। मंगल रोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हियांश कुमार चंदन। पटापरा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखलाल वर्मा जी। बक्सर बिहार से सफरुद्दीन अंसारी, खातून अंसारी, सुरेत रमेश साहू। डुमराव बिहार से डब्ल्यू अंसारी, सोना मदीबा, दानिश अंसारी जी। बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य। श्रीरामपुर से हैं अशोक कुमार, एविका जीविका, सानू कुमार, अर्चना कुमार, गणेश अविका। पुनावले से अजय सोनवानी, करिश्मा सोनवानी, अविका सोनवानी, शायसा सोनवानी जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं कभी तो छलिया लगता है। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

चैतन्य मस्किन मेघा मस्किन चंडीगढ़ से राहुल रचिता खुराना जी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल छिपा ईशान पूजा परिहार। नवाशहर पंजाब से गंगादीप थाटी तीता कुमारी थांडे प्रशांत और प्रियंका वामी थांडे जी। उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी बघेल साहिल भारती बघेल लगान पंडिया छत्तीसगढ़ से हैं ये। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी चौहान कल्पित चौहान बेबी करवी हिमाक्ष जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारी भी चाहिए जिंदर बुजुर्ग से। फिल्म का नाम है साथियों, बताना चाहूँगी। गीत के बोल हैं ओ मेरी महबूबा। फिल्म का नाम है धर्मवीर। श्रोता साथियों, फरमाइश करता जुड़ रहे सिंधी बुजुर्ग से किशोर वड़तकर, शिवम वड़तकर, पुन्नू वड़तकर और भी दोस्त खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मण मल्होत्रा, लाडूकल मल्होत्रा, नानकचल मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गो सिक्का जी। और भी हमारे श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूँगी साथियों, जुड़ना चाह रहे हैं सहारनपुर से सैयद मसूद, साइना अक्सा, नाजमा आफिया, इब्राहिम सद्दाम जी। और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी साथियों, जुड़ रहे हैं मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, सभ्य धाड़े, अजय खिरोडकर। यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मणराव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा सोपिल, रक्षंता लोखंडे जी जुड़ना चाह रहे हैं। और भी साथी जफराबाद से सुधाकर राजे जादव, प्रशांत राजे जादव, संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, श्रवत देशमुख, सानवी देशमुख, कल्पना देशमुख जी। अनारकली बाजार जगराव से हैं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ओ मेरी महबूबा।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारेशर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सदर बाजार कुरावली से। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, गीत के बोल हैं कोई नहीं है फिर भी। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, नितिन कुमार वर्मा और सोनम जी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र जी टांगी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दादरी गेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल जी मेहरा। इस गीत के अनुरोध करता है भीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेलेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बिटू, पीपी कुतलेश जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है एकता कॉलोनी रोहतक से। फिल्म का नाम है चरस, गीत के बोल ही आजा तेरी याद आई। इस गीत की फरमाइश करता है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित जी कांगड़ा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। पथरोड से विजया अंबाटकर, सुनीता अंबाटकर, अक्षय अंबाटकर, राधिका अंबाटकर, ऋषिकेश जी अंबाटकर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार गली कालगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार मारवाड़ा भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जी नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। इस गीत के अनुरोध करता है पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम जी नेताम। हिंगोली महाराष्ट्र से जुड़ रही हैं साजी बोर्ड की श्रीमती नंदा जी बोर्ड की, हनुमान जी बोर्ड की, उत्तम जी जगदाड़ी जी। बुलंदशहर से जुड़ना चाह रही मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान जी अब्बासी, अबान जी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत की बोल है आजा तेरी याद आई। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने और मोहम्मद रफी जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सिरसा से। फिल्म का नाम है जिंदगी और तूफान। गीत के बोल ही एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। इस गीत को आवाज दी है मुकेश जी ने। इस गीत की अनुरोध करता है राधेश्याम शर्मा, इंदिरा देवी शर्मा, सार्थक जी शर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। सर राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ से बबलू शाहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बीबी, आराध्या जी शाहू। इस गीत के अनुरोध करता है राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चनाताई गुड़ाने, हीरामन शेंडी, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभाजी गुड़ाने। इसी बीच जुड़ना चाह रही नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़ रही नारायण इगले, सोपान तावड़ी, आशीष मेहकर जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जैन मंदिर वाले गली कुरावली से साईद हुसैन अंसारी, नरसिंह अंसारी, नूरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल एक हसरत थी कि मुझे भी आंचल का प्यार मिले। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोलते हैं एक हसरत थी कि मुझे भी आंचल का प्यार मिले। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है वासिम महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है राजा रानी। गीत के बोल हैं दुनिया का मेला। इस गीत की फरमाइश करता है मास्टर विट्ठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायराजी सुरेशी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही है पटिया कला दुर्ग सी, संजय शाहू, शशांक शाहू, सीमा साहू, सुजिता जी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रही हैं श्री रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, शाहिद शेख। अहमदनगर से जुड़ना चाह रही हैं जुमिद मुजावर, सभिया मुजावर, मिखाइल जी मुजावर और जुमेब जी मुजावर। इसी बीच जुड़ना चाह रही हैं अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हंगोड़ी, योगिता, प्रणाली, पार्थ और हंगोड़ी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। डाबकी रोड अकोला से जुड़ रही हैं शशीला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे धनोरी तेलेवाला से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, अयन बाबू। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत की बोली दुनिया का मेला। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। इस गीत आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जाखोत राजस्थान से। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। गीत के बोल ही बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और रफ़ी साहब ने। इस गीत के अनुरोध करता है शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। हरिद्वार से जुड़ना चाह रहे ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रहे, मेराब जहां जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। इस गीत के अनुरोध करता है पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, देवगाना, दुर्गा प्रसाद, पराग जी, पूना जी और कृष्णा जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे बाबा कुटरे रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष जी चौहान। गंजडवारा से जुड़ना चाह रही मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान जी अंसारी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी ने और मोहम्मद रफ़ी जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों, अभी हमने लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है फूल और अंगारे। गीत के बोल हैं, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। इस गीत की फरमाइश करते हैं रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रीतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं, इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अकोट से विनायक भेंडे, श्रीमती मंगला जी भेंडे, विजय शुभम, पवन जरिए और सजीव जी। अस्तुपुरा जिला मऊ से जुड़ रहे हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक जी अंसारी। गाजीपुर से जुड़ना चाह रहे हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला जी आज़ाद। दुलापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरार, नरगिस जी खातून। इस गीत के अनुरोध करता है मॉडल ट्यून कर्नल सी सुधीर न्यूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापत, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, किरण ठाकुर जी। दुलापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोहिनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से श्याम कीटे, वंदना कीटे, कार्तिक जी कीटे। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है अनाड़ी। गीत के बोल हैं फूलों सा चेहरा तेरा। इस गीत को आवाज़ दी है उदित नारायण जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है हिमकेश्वर शाहू, करण राहुल शाहू, चंपा जी शाहू। इसी बीच जुन्नाचार्य छत्रपति संभाजीनगर से, राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल जी राजेश। इस गीत के अनुरोध करता है मुरादाबाद से माया देवी, ऋतिक आदित्य जी का साना। इसी बीच जुड़नाचार्य पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार झाजोरिया, गीता रानी झाजोरिया, गंदीप झाजोरिया, आरजू झाजोरिया और गुड्डू जी। इसी बीच जुड़नाचार्य ही हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक जी भाटिया और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। मुगलपुरा भागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है बदायूं से रशीद खान, शायरा बेगम, रफियू खान, सावरीन बेगम, शहबाज खान, से शेफ खान, ईशान खान, आजाब खान, अरहान खान और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। जलालाबाद वेस्ट से सूरज गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकिस्ट्रो, रोजी डिकिस्ट्रो, पल डिकिस्ट्रो, विलेज डिकिस्ट्रो। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं फूलों सा चेहरा तेरा। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिहार कॉलोनी दिल्ली से। फिल्म का नाम है बाजीगर, गीत के बोल हैं किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। इस गीत की फरमाइश करता है तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधांजी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे गंजुडवारा गणेशपुर से फिराज हुसैन, अलकमर जहां, सिफा सिमरन, मोहम्मद अल्फेक, शिवाजी शेख। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश कड़वासरा, योगेश जी कड़वासरा। इस गीत की अनुरोध करता है झारखंड से अब्बास आलम, मजद अली, लाडली और निशा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बीबी आयुष श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो, मानस जी राज। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं आगरा से श्रीमती सरिता चौरासिया, सुमित चौरासिया, अवीर और वीर चौरासिया। कानपुर से जुड़ना चाह रहे श्रीमती सुजाता चौरासिया, पंकज चौरासिया, पीयू और दियाजी चौरासिया। यूपी से जुड़ रहे हैं सुरेश चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, सबोज चौरासिया, सलोनी चौरासिया, संजू लल्ला चौरासिया, बाबू शिवा, शिवानी जी चौरासिया। और भी साथी जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदनी नामदेव, नेहा नामदेव, चन्नूलाल श्रीवास, रंजन शाहू जी। इस गीत के अनुरोध करता है गंजडवा।

रा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी, राधा नामदेव जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजु योगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, सृष्टि बन्ने, आरुषि शोरिया, दिनेश जी। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, वेदी जोशी, बेबी हंसिका जी जोशी, मनीष वर्मा, रेहान खान, पायल जोशी, अंकिता जोशी। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ रही हैं अब्दुल गफार डावर जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। और साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

रहा हूँ। आप सब में हनुमान स्वागत करो हूँ हमारी आज ने हाजिर ने सभा में। आप सभा में रेडियो हो आप समुदाय रेडियो वागर रेडियो ने प्रदर्शन आटा फरमाते वो हूँ आपने हाथे अपनी बुनंजलि पारेश्वर ने आज वार सोमवार ने तारीख 13 जुलाई 2026 नो दाड़ो है। नाइन मोनो में देखी रहा हूँ की अपने स्टूडियो की घड़ी में हाजिना पासवा की गई है। तब आप शुरुआत करो हाजिर ने सभा में पुनः प्रसारित थवा वाला कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। नाइन मोनो आज सभा ने शुरुआत करेंगे सप्ताह की पहले भक्ति श्रद्धा ने आसत की जुड़ कार्यक्रम आराधना तक की इनमें अपने हम रंगा आज न सुविचार निहाते भक्ति में गीत अनस क्रम में अपने आगाड़ी बढ़ेंगे हमारी ने तुम्हारी आवाज कार्यक्रम युवाओं ने आवाज ने आड़ी आ कार्यक्रम आप हमरी सकोगा ठीक 5:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने कशिश पारेश्वर ने हाथे इस कड़ी में बीजा कार्यक्रम ने शुरुआत थागा जेने कहें बालकनु बालपन एटले कार्यक्रम सच्चा बचपन और कार्यक्रम आप हमरी सकोगा ठीक 6 प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने मु आपकी मूल अंजलि पारेश्वर ने हाथे इस कड़ी में अपने आगे बढ़ेंगा अपने किसान भाई बहनों की जो कार्यक्रम खेती बाड़ी आ कार्यक्रम आप हम सकोगा ठीक 6:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने मुँह आपकी बहुत अंजलि पारेश्वर ने हाथे इस कड़ी में अपने आगे बढ़ेंगा अपने अधिकार कानून नियम तक की जोड़ो कार्यक्रम सच्चा स्वराज आ कार्यक्रम आप हम सकोगा ठीक 7:00 प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने मुँह आपकी बहुत अंजलि पारेश्वर ने हाथे नाइन मोनो वीजा कार्यक्रम की शुरुआत था का ठीक 7:30 माते कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य आ कार्यक्रम लेने आवीना प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर मनीषा पटेल अना साथे भाई बोनो ठीक 8:00 आप हम होगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी भाई बोनो इन बाद ठीक 8:30 माते आप हम होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत जिनमें आप हम होगा फिल्मी गीतों ने नवा नजर गीत नाइन मोनो ठीक 8:00 तक की 9:00 आप हम होगा कार्यक्रम शामी गजल तो आ तो होती अपने हाजिर सभा में पुनः प्रसारित थवा वाला कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब अपने सभा की शुरुआत करा भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक की जोड़ो कार्यक्रम आराधना थक

0: आज के सुविचार।
1: मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। धन, प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञात था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की, जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है कि सही सवाल पूछने की ताकत सफलता की पहली सीढ़ी होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी।
1: श्रोता साथियों, अक्सर हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो अधिक सवाल पूछता है वो बहुत परेशान करता है। कई बार बच्चों को ये कहकर चुप करा दिया जाता है कशिश कि इतने सवाल मत पूछो। धीरे धीरे ये आदत युवा अवस्था तक पहुँच जाती है और बहुत से युवा अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को दबा देते हैं।
0: जी जी।
1: लेकिन सच ये है श्रोता साथियों कि सवाल पूछना कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है।
0: जी हाँ।
1: दुनिया में जितनी बड़ी खोजें हुई हैं, जितने भी नए विचार सामने आए हैं और जितनी भी नई राहें बनी हैं, उनकी शुरुआत किसी न किसी सवाल से हुई है।
0: बिल्कुल।
1: यदि किसी ने ये सवाल न पूछा होता कि क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता है, तो शायद आज दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ पाती।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें करने वाले हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं इस गीत को। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि सही सवाल पूछने की ताकत सफलता की पहली सीढ़ी है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले हमारे युवा साथियों को ये बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि माता पिता बचपन से ही बच्चों को कम सवाल पूछने की आदत डलवाते हैं, लेकिन जब यही आदत युवावस्था तक रहती है तो युवा साथी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और अपने सवालों को दबा कर रखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसे में श्रोता साथियों, आज का जो युवा है वो एक ऐसे समय में जी रहा है जहाँ जानकारी की कोई कमी नहीं है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हर पल लाखों जानकारी उपलब्ध है जागृति
1: जी। हाँ,
0: लेकिन जानकारी होना और सही जानकारी होना, इन दोनों बातों में फर्क होता है। श्रोता साथियों, ये दोनों ही बातें अलग अलग हैं, इसलिए आज सबसे अधिक आवश्यकता केवल उत्तर खोजने की नहीं बल्कि सही सवाल पूछने की है जागृति जी।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हर इंसान जन्म से जिज्ञासु होता है। छोटा बच्चा हर बात पर पूछता है, ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, और यही जिज्ञासा उसे सीखने की ओर ले जाती है।
0: बिल्कुल,
1: जब युवा सवाल पूछते हैं तब वे केवल जानकारी नहीं जुटाते बल्कि अपनी सोच का विस्तार भी करते हैं। जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है वो केवल सुनकर विश्वास नहीं करता बल्कि समझने की कोशिश भी करता है।
0: जी जी,
1: और यही आदत उसे दूसरों से अलग बनाती है। आज हम देखते हैं कशिश की शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों के उत्तर याद करना नहीं है। असली शिक्षा तो वो है जो सोचने, समझने और सही प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करे।
0: बिल्कुल,
1: जिस दिन युवा प्रश्न पूछना सीख जाएगा उसी दिन उनका वास्तविक विकास भी शुरू हो जाएगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। साथ ही हम देखते हैं कि अगर हमारे युवा साथी अपने सवालों को पूछते नहीं हैं, तो इससे उनके मन में बेचैनी बनी रहती है।
1: बिल्कुल,
0: जिसके कारण दोस्तों हमें ढेर सारे नुकसान हो सकते हैं। अगर उन नुकसानों की बात करें तो जीवन में हर दिन हमें छोटे छोटे और बड़े निर्णय तो लेने ही पड़ते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कई बार जागृति जी युवा बिना पूरी जानकारी के केवल दूसरों को देखकर फैसले ले लेते हैं। कोई दोस्त किसी कोर्स में अगर जा रहा है इसलिए हम भी उसी में प्रवेश ले लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कोई सोशल मीडिया पर किसी करियर की तारीफ कर रहा है इसलिए हमें भी वही अच्छा लगने लगता है। लेकिन दोस्तों, यदि हम पहले कुछ जरूरी सवाल पूछें कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मेरी इसमें रुचि है, कि क्या इसमें भविष्य में कोई अवसर है मेरे लिए, तो दोस्तों ये सभी जो बातें हैं उन सभी से हम गलत निर्णयों से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अच्छे निर्णय हमेशा सही जानकारी और सही सवालों पर ही आधारित होते हैं जागृति जी।
1: जी हाँ कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, युवाओं के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है करियर का चुनाव। कशिश, हम देखते हैं कि करियर चुनते समय केवल ये हमें नहीं सोचना है कि कौन सा क्षेत्र हमारे लिए लोकप्रिय है।
0: बिल्कुल,
1: हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे किस काम में खुशी मिलती है, मेरी सबसे बड़ी क्षमता क्या है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर कितने होंगे, मुझे कौन कौन से कौशल सीखने होंगे, क्या मैं इस क्षेत्र में लंबे समय तक काम करना चाहता हूँ या चाहूंगी। श्रोताओं, जब इन प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाए तब करियर का रास्ता काफी हद तक स्पष्ट हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: आज हम देखते हैं कशिश की सोशल मीडिया हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, लेकिन यहाँ हर वीडियो, हर पोस्ट और हर समाचार सही हो ये जरूरी भी नहीं है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि दोस्तों कई बार अधूरी या झूठी जानकारी बहुत तेजी से फैल जाती है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम बिना जांच किए उस पर विश्वास करने लगे जागृति जी, तो हम स्वयं भी भ्रमित होंगे और दूसरों को भी इसके प्रति भ्रमित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमारे युवा साथियों को एक आदत बनानी चाहिए, वो ये कि किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसके स्रोत, प्रमाण और सत्यता की जांच अवश्य करनी है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि दोस्तों यही एक अच्छे नागरिक की पहचान होती है।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, ते बातें ऐसे ही युवाओं की आवाज कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी।
0: जी जी,
1: लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आइए युवा साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी, सही सवाल पूछने की ताकत सफलता की पहली सीढ़ी होती है।
1: बिल्कुल,
0: इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने गीत से पहले जाना था कि सवाल ही सीखने की पहली सीढ़ी होती है। बिना सवाल पूछे निर्णय लेने के नुकसान क्या होते हैं, करियर चुनने से पहले कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, सोशल मीडिया पर हर बात सही नहीं होती, ये सारी बातें हमने करी थी कशिश
1: जी। जी,
0: यही बात करते हैं, आलोचनात्मक सोच क्यों जरूरी है। श्रोता साथियों, सिर्फ सुन लेना पर्याप्त नहीं है, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि जो बात कही जा रही है वो कितनी सही है। आलोचनात्मक सोच का अर्थ किसी की आलोचना करना नहीं, बल्कि हर विषय को तर्क, तथ्य और समझ के आधार पर परखना है।
1: बिल्कुल,
0: जब युवा ये सोच विकसित करते हैं तब वे अफवाहों से बचते हैं, गलत निर्णय नहीं लेते और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले नागरिक जरूर बनते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें तो जो युवा अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं वे धीरे धीरे अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, प्रश्न पूछने से ज्ञान बढ़ता है, समझ मजबूत होती है और संवाद करने की क्षमता विकसित होती है। जैसे कि कार्यस्थल, कॉलेज, प्रतियोगी परीक्षाएं और इंटरव्यू में वही युवा आगे निकलते हैं जागृति जी, जो सही समय पर सही प्रश्न पूछना जानते हो।
0: बिल्कुल,
1: देख सकते हैं कि बहुत से युवाओं के मन में अक्सर ये डर होता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, कुछ सोचते हैं कि कहीं उनका प्रश्न गलत न निकल जाए, और कुछ संकोच के कारण चुप रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़ा नुकसान गलत सवाल पूछने से नहीं होता, बल्कि सही सवाल न पूछने से होता है।
0: बिल्कुल,
1: जिस वातावरण में प्रश्न पूछने की आजादी होती है श्रोता साथियों, वही नए विचार जन्म लेते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि इसके लिए कुछ सरल आदतें अपनाई जा सकती है, जैसे कि हम रोज कुछ नया पढ़े, किसी बात को ध्यान से सुने, जो बात समझ नहीं आए उसे नोट करें, अनुभवी लोगों से चर्चा करें, किसी विषय को केवल याद नहीं करें बल्कि समझने का प्रयास करें। धीरे धीरे हमारा मन हर विषय को गहराई से समझने लगेगा श्रोताओं, और सही प्रश्न अपने आप बनने लगेगा। इतिहास गवाह कशिश की जिन्होंने दुनिया को नई दिशा दी, उन्होंने सबसे पहले सवाल पूछे, उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि जो पहले से है वही अंतिम सत्य है, उन्होंने नई संभावनाएं खोजी और अपने प्रयासों से समाज को आगे बढ़ाया।
1: बिल्कुल,
0: और यही सोच आज के युवाओं को भी अपनानी होगी। परिवर्तन

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहेंगे हम कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बच्चों के लिए सुनने की कला और समझ की जागरूकता को लेकर। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बचपन वह उम्र होती है अंजलि जी, जहां बच्चा हर चीजों को सीखता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि बोलना, चलना, समझना और हर चीज को महसूस करना। लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत जरूरी कला होती है साथियों, जिसे अक्सर माता पिता के द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है।
1: जी हाँ,
0: और वह है अंजलि जी सुनने की कला। हम देखते हैं कि सुनना सिर्फ कानों से आवाज सुन लेना नहीं होता, यह एक कला होती है साथियों, जिससे हम सामने वाले की बात को समझते हैं, महसूस करते हैं और उसका आदर करते हैं।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, बच्चों को बचपन से

0: यह कला माता पिता के द्वारा सिखाई जाए तो वे एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, संवेदनशील और समझदार, साथ ही सफल जैसे गुण उनके अंदर आ सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। साथियों कहना चाहेंगे कि सुनने की कला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ होता है कि सामने वालों की बातों को पूरा ध्यान देकर हमें सुनना है और मन लगाकर पूरी बात समझने की कोशिश करनी है। बच्चों को यह कला सिखाना क्यों जरूरी है इसको लेकर बात करें तो श्रोता साथियों वे अपने माता पिता, शिक्षक और बड़ों से जो कुछ सीखते हैं वह ज्यादातर बातों को सुनकर ही सीखते हैं। सुनने से उनका ध्यान केंद्रित होता है, वे दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ हम देखते हैं कशिश कि इससे बच्चों को अच्छी सीख मिल पाती है, यानी कि बच्चा जब ध्यान से सुनता है तो वह चीजों को जल्दी और गहराई से समझ पाता है।
0: बिल्कुल।
1: स्कूल में पढ़ाई, घर पर समझाइश सब तभी कारगर होते हैं जब बच्चा ध्यान से किसी घर वाले व्यक्ति की या अन्य व्यक्ति की बातें ध्यान से सुनता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी। इसी के साथ दोस्तों आपको बताएं तो रिश्तों में मधुरता के लिए भी बच्चों के द्वारा सुनना जरूरी है। यानी कि अंजलि जी, अगर बच्चा अपने दोस्तों, माता पिता और शिक्षकों की बातें ध्यान से सुनेगा तो झगड़े भी कम होंगे और इससे उनके रिश्ते भी मजबूत होंगे।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही सहनशीलता और धैर्य के गुण के लिए भी सुनने की आदत का होना बहुत जरूरी होता है। साथियों कह सकते हैं कि ध्यान से सुनना बच्चों को शांत व्यक्तित्व का बनाता है।
1: बिल्कुल।
0: वे पहले दूसरों की बातों को समझते हैं, फिर उस बात पर प्रतिक्रिया अपनी देते हैं। इसी के साथ ही सुनने से बच्चे नए शब्द, उच्चारण और विचार भी सीख पाते हैं। श्रोता साथियों
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि अच्छा सुनने वाले बच्चे समाज में सभी के प्रिय बनते हैं क्योंकि वह सबकी इज्जत करना जानते हैं।
1: जी हाँ। श्रोता साथियों सुनने के साथ साथ बात को समझना भी जरूरी होता है। अगर बच्चा केवल सुन ही रहा है लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ पा रहा है तो वह सीख नहीं पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: कहना चाहेंगे कि बच्चों को समझने के लिए भी हमें जागरूक करना होगा। बच्चा सही और गलत में फर्क कर पाता है, उसे पता चलता है कि कब क्या करना है और क्या नहीं करना है।
0: जी जी।
1: वह दूसरों की भावनाओं को पहचानना सीखता है, जैसे कि कोई दुखी है या खुश है। वह दया, माफी और सहयोग जैसे गुण को भी आत्मसात करता है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों अब यही बात करें कि बच्चों को सुनने की कला कैसे सिखाएं, तो सबसे पहले बात आती है उदाहरण बने।
0: बिल्कुल।
1: कि जब माता पिता या शिक्षक खुद बच्चों की बात सुनते हैं तो बच्चे भी यही करना सीखते हैं। कहानी के जरिए भी हम बच्चों को सुनने और समझने की आदत डाल सकते हैं और किसी की बात को सुनने के बाद उनसे सवाल पूछें, इससे वे ध्यान से सुनेंगे और सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अगर हम ध्यान से सुनेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं तो अंत में हमसे सवाल जो किए जाएंगे उनका जवाब हम कैसे देंगे।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा।
1: दोस्तों कहना चाहेंगे कि जो बच्चा ध्यान से सुने उसकी तारीफ या इनाम देना उसकी आदत को मजबूत करता है। इसी के साथ समूह में खेले, संगीत, कविता में हिस्सा लेने से सुनने और समझने की आदत बनती है। इस तरीके से ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों के अंदर सुनने की कला को विकसित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छी चल रही हैं, ये बातें और भी है जो ऐसे ही आगे कार्यक्रम में जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

हम तुम संग है तो फिर क्या गम, तू मेरा दिल तू मेरी जान।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हम जान पा रहे थे कि बच्चों को हमें सुनने की आदत कैसे डालनी है और किस तरीके से ध्यान से सुनने के बहुत सारे फायदे हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, जो बच्चा ध्यान से सुनने की आदत डालता है तो वो एक सहनशील समझदार इंसान बनता है, वह अच्छा दोस्त, सच्चा विद्यार्थी, सम्मान देने वाला नागरिक भी बनता है।
1: बिल्कुल,
0: उसमें धैर्य, शांति और संवेदनशीलता जैसे गुण आते हैं कशिश। वह नेता बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है क्योंकि एक अच्छा नेता पहले सुनता है।
1: जी जी,
0: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बचपन वो नींव है जिस पर पूरे जीवन की इमारत खड़ी होती है। अगर इस नींव में सुनने की कला और समझ की जागरूकता को शामिल किया जाए तो हर बच्चा जीवन में सफलता, सम्मान और सहानुभूति के साथ आगे बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमें चाहिए कि हम बच्चों को सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि ध्यान से सुनना भी सिखाएं, क्योंकि सुनना अगर बच्चे सीख गए तो वे जीवन की सबसे गहरी बातों को समझ पाएंगे।
1: बिल्कुल, इसी के साथ दोस्तों, सुनने की आदत और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बच्चों में जरूरी होती है। कह सकते हैं कि अंजलि जी, जब बच्चा ध्यान से सुनता है तो उसका मन इधर उधर भटकता नहीं है, इससे उसकी एकाग्रता बढ़ती है साथियों, जो पढ़ाई, खेल और जीवन के हर क्षेत्र में फायदेमंद मानी जाती है।
0: बिल्कुल,
1: देखते हैं अंजलि जी कि जब कोई बच्चा अपने बड़ों, शिक्षकों या फिर साथियों की बात को ध्यान से सुनता है तो यह एक तरह से उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का भाव होता है।
0: जी हाँ,
1: यह आदत आगे चलकर उन्हें और संस्कारी और विनम्र बनाती है साथियों। ध्यान से सुनने वाला बच्चा दूसरों की भावनाओं को भी समझता है और अपनाना सीखता है।
0: जी बिल्कुल,
1: इससे वह करुणामय, मददगार और दूसरों की तकलीफों को समझने वाला इंसान बनता है। हम देखते हैं इससे बच्चों में झगड़े और गलतफहमियों की भावना भी कम होती है।
0: जी हाँ
1: साथियों, बताना चाहेंगे कि जब बच्चे आपकी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें दूसरों की बात का सही मतलब समझ में आता है और झगड़े, नाराजगी या फिर गलतफहमी जैसी भाव से भी वे बच पाते हैं। इसी के साथ ही ध्यान से सुनना एक ऐसा जीवन कौशल है जो आगे चलकर नौकरी, रिश्ते, टीम वर्क और कह सकते हैं कि नेतृत्व जैसे हर पहलू में काम आता है। अंजलि जी
0: बिल्कुल, श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बोलने की बजाय पहले सुनने की आदत बच्चों को धैर्य, सोचने की शक्ति और संयम सिखाती है। कशिश हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में पढ़ने की क्षमता बाद में आती है लेकिन सुनना तो जन्म से ही शुरू हो जाता है।
1: जी जी,
0: शुरुआती शिक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम सुनना ही होता है। अगर माँ कोई कहानी सुना रही है और बच्चा ध्यान से नहीं सुनता है तो न तो वो कहानी का मजा ले पाएगा और न ही उसका संदेश समझ पाएगा।
1: जी जी,
0: श्रोता साथियों इसी के साथ हम देखते हैं कि अगर शिक्षक कुछ समझा रहे हैं और बच्चा बार बार बात काटता है या ध्यान से नहीं सुनता है तो वो पीछे रह जाता है। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें बच्चों को बचपन से ही बतानी है।
1: बिल्कुल,
0: आजकल बच्चे मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे वास्तविक बातचीत को अनसुना कर देते हैं।
1: जी हाँ।
0: परिवार में संवाद कम होता है, बच्चा केवल एक तरफा जानकारी ही लेता है, उसमें दूसरों की बातें सुनने और समझने की शक्ति घटती जाती है। श्रोता साथियों, बच्चों को सिखाना चाहिए कि बोलने से पहले सामने वाले की पूरी बात को हमें ध्यान से सुनना है।
1: बिल्कुल,
0: फिर सोचना है और फिर ही प्रतिक्रिया देनी है। इससे वे तर्कपूर्ण बोलना सीखेंगे, जल्दबाजी में जवाब देना बंद करेंगे और झगड़े और टकरावों से बच पाएंगे।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ दोस्तों आपको बताएं तो सुनकर सीखने की आदत से आत्मविश्वास भी बच्चों का बढ़ता है। अंजलि जी, जब बच्चे शिक्षक, माता पिता या फिर साथियों से कुछ सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं तो उन्हें सफलता जरूर मिलती है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, ये सफलता उनके भीतर आत्मविश्वास को भर देती है। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए कि जब कोई बच्चा ध्यान से शिक्षक की बात सुन रहा है और उसी तरह वह अभ्यास भी करता है तो परीक्षा में अच्छे अंक वह ला पाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ ही बच्चों के लिए सहयोग और मिलजुल कर काम करना बहुत जरूरी है, चाहे वह स्कूल का प्रोजेक्ट हो या फिर खेल का मैदान। साथियों, अगर बच्चा टीम के साथियों की बात नहीं सुनता है तो तालमेल बिगड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: काम या फिर खेल बिगड़ सकता है, इसलिए सुनना टीम भावना की नींव होती है, या आप अपने बच्चों को बताएं।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सुनना हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और सुनने की कला का महत्व हमें हमारे बच्चों को बचपन से ही बताना है।
1: बिल्कुल,
0: ताकि वे सभी की बातें ध्यान से सुने और फिर सोच समझ कर जवाब देने से उनकी बात का महत्व भी रहेगा और उनके अंदर आत्मविश्वास भी बना रहेगा।
1: जी हाँ।
0: आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी।
2: चकरक चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चक चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकु बुकु रे टुकु बुकु रे चकलक बिक्को चिक्को सिली सिली सिली गो बगड़ दुम चकड़ दुम चिकी चक चो

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन हमारा यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में विषय से जुड़ी जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी अपने राय सुझाव पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवन, फल सब्जी रोजे खा बीमार।

कार्यक्रम खेतीबाड़ी हमरावारा हंगरे किसान भाई बोना ने आपनी पोन जागृति नु राम राम। आप सब हमरे रहो आपनू सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM ने आप सब नु स्वागत करो हाँ अपने आसने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। जिम के किसान भाई बोन आप सब ने खबर हसे कि हमें रोज से नवा नवा विषय माते बातें करा हाँ अना कार्यक्रम में, तो आज भी एक नव विषय जोड़ाई है। आज नो विषय है पशु अने दूध उत्पादन अपने हरते बढ़ावी सका, तो आना विषय माते आज अपने बातें तो करंगा, पण कार्यक्रम की शुरुआत में अपने हमरेला कितने मोरे करा आपड़ी बातें। आप सब हम बढ़ते रहो आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वागर रेडियो 90.8 FM माते।

0: કિસાન ભાઈ બન અણા ગીત ને બાદ એક વખત ફેરી આપ સબનું સ્વાગત કરહા આપણે આજની કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મે નિઝિમકી ગીતે કે પહેલે આપણે વિષય બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતે કરવા રહા કે પશુને દૂધ ઉત્પાદન આપણે હરતે વધાવી શકા તો કિસાન ભાઈ બન અણા વિશેની જાણકારી આલવા બદલે આજે આપણે સ્ટુડિયો મેં મનીષજી સર આવ્યા હે એ આપણને બતાડેંગા પશુને બારામાં કે પશુને આપણે દેખભાલ આપણે હરતે કરી શકા ને આ દૂધ ઉત્પાદન આપણે હરતે વધાવી શકા તો પહેલે હામરી લાણાની વાતે ને મોરે કરા આપણી વાતે
1: સર નમસ્કાર
2: નમસ્તે અંજલિ જી
1: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મે
2: જી આપકા ધન્યવાદ
1: સર જૈસા કે આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે નિરંતર જુડતે રહેતે હૈ ઓર ખેતી સે જુડી પશુપાલન સે જુડી હુઈ ઢેર સારી જાણકારી આપ હમારે કિસાન ભાઈ બહેનોં કો દેતે હૈ ઓર હમ દેખતે હૈ કે હમારે જો વાગડ ક્ષેત્ર કે કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો ખેતી કે સાથ સાથ પશુપાલન કરતે હૈ ક્યુંકી હમ દેખતે હૈ કે પશુઓ સે ઉન્હે દૂધ ઉત્પાદન કે સાથ સાથ અનેક પ્રકાર કે જૈવિક ખાદ ભી પ્રાપ્ત હોતે હૈ જો ઉનકે ખેતી કો બહોત હી અચ્છી તરીકે સે ઉપજાઉ બનાતે હૈ તો એસે મે આજ કાર્યક્રમ મે હમ આપસે યે જાનના ચાહેંગે કે પશુધન મેં દૂધ ઉત્પાદન બઢાને કે લિયે ક્યા ઉપાય કિયે જાતે હૈ ક્યુંકી હમ દેખતે હૈ કે હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો પશુપાલન તો કરતે હૈ લેકિન બહોત સી બાર જો ઉત્પાદન ઉન્હે મિલના ચાહિયે વો નહીં મિલ પાતા હૈ એસે મે હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો ઉન પશુઓ કો બેચ દેતે હૈ ઓર અપની જો ખેતી હૈ ઉસે યથાવત એસે હી રહેને દેતે હૈ તો એસે મે ક્યા એસે ઉપાય કિયે જા સકતે હૈ જિસસે પશુધન કા જો ઉત્પાદન હૈ વો બઢ સકે
2: જી મેં સભી શ્રોતાઓ કો ઇસ વિષય પે બતાના ચાહુંગા કે પશુધન મેં દૂધ ઉત્પાદન બઢાને કે જો ઉપાય હૈ જિસકે પહેલે હમ યે જાનતે હૈ કે પશુધન કા જો પાલન હમ કરતે હૈ વો માત્ર દૂધ ઉત્પાદન કે લિયે નહીં કરતે હૈ
1: જી જી
2: પર પશુધન મેં દૂધ ઉત્પાદન એક મહત્વપૂર્ણ આર્થિક લાભ કા બિંદુ હોતા હૈ ચાહે હમ ઉસકા ઉપયોગ પરિવાર મેં કરતે હૈ યા કિસી પ્રકાર સે ઉસકે આર્થિક લાભ પાને કે લિયે
1: જી જી
2: તો દૂધ ઉત્પાદન વાસ્તવિકતા મેં હમારે યહાં કી જો નસલે હૈ જિનકો સ્થાનીય સ્તર પે પાલા જાતા હૈ ઓર સ્થાનીય નસલે હૈ તો ઉનસે જિતના દૂધ ઉત્પાદન મિલના ચાહિયે વો ભી ઉનકો નહીં મિલ પાતા
1: જી જી
2: તો ઇસકે લિયે તીન કારક મહત્વપૂર્ણ હોતે હૈ પહેલા હોતા હૈ પોષણ પ્રબંધન
1: જી બિલકુલ
2: દૂસરા હોતા હૈ હમારે જો પશુધન ચિકિત્સા કે પારંપરિક જ્ઞાન જો અબ હમારે પાસ સે લગભગ વિલુપ્ત હોતા જા રહા હૈ
1: જી જી
2: ઓર તીસરા હોતા હૈ પશુધન પ્રબંધન મેં પશુ કે આવાસ સહિત અન્ય સારી વ્યવસ્થાએં જિસકે કારણ કઈ બાર પશુ જો હૈ તનાવગ્રસ્ત રહેતા હૈ
1: જી બિલકુલ
2: તો ઇન તીન બિંદુઓ પે હમ બાત કરેંગે કે કિસ પ્રકાર સે ઇસકા પ્રબંધન કિયા જાય જિસસે હમારે પશુધન કા જો દૂધ ઉત્પાદન હૈ વો એક જૈસા બના રહે ઓર ઉનકી જિતની ઉત્પાદન ક્ષમતા હૈ ઉસ પૂરી ઉત્પાદન ક્ષમતા કા દૂધ હમ ઉનસે પ્રાપ્ત કર સકે
1: જી બિલકુલ
2: તો જૈસા કિ હમને જો તીન બિંદુઓ પે બાત કી તો ખરાબ પોષણ પ્રબંધન પારંપરિક પશુ ચિકિત્સા વિધિઓ કી જાણકારી તો ક્ષેત્ર કે દૂધ કી પેદાવાર કી આવશ્યકતા હમારે યહાં પે જો હૈ વો ઉસ આવશ્યકતા સે દૂધ ઉત્પાદન વાગડ ક્ષેત્ર મેં કાફી કમ હૈ
1: જી બિલકુલ સર
2: અબ ઇસકે સાથ મેં યદિ દેખા જાય તો દૂધ કી પેદાવાર તો કમ હૈ હી હૈ દૂધ મેં જો વસા કી માત્રા હોના ચાહિયે યા પ્રતિશત હોના ચાહિયે વો ભી કમ હૈ
1: જી બિલકુલ
2: જૈસા કી હમ બાત કર રહે હૈ તો બકરી હો ગાય હૈ ભેંસ હૈ તો ઇનકી જો આનુવાંશિક ક્ષમતા હૈ દૂધ ઉત્પાદન કી ઉસસે ભી કમ ઉત્પાદન અગર મિલ રહા હૈ તો હમકો ઇન ચીજોં કો ધ્યાન દેના હૈ
1: જી જી
2: કે પશુધન કો ઉસકી આનુવાંશિક ક્ષમતા સે પરે નહીં બઢા સકતે હૈ તો જો ભી હમારે યહાં કે સ્થાનીય પ્રજાતિયાં હૈ ઓર ઉનકી જો ક્ષમતા હૈ વો હમારે પશુપાલકો કો અચ્છી તરહ સે પતા હોતી હૈ તો હમ ઉસસે જ્યાદા દૂધ ઉત્પાદન કી ઉમ્મીદ તો નહીં કર સકતે હૈ તો યદિ કોઈ ઇસ તરહ કી ઉમ્મીદ કરતે હૈ તો ઉનકો યે ચીજ સમજના હોગી
1: જી બિલકુલ
2: પર યહાં હમ એક દૂસરી હી ચીજ દેખતે હૈ કે અધિકાંશ કિસાન અપને પશુધન સે વાસ્તવિક યા સંભાવિત દૂધ કી પેદાવાર ભી નહીં લે પાતે હૈ
1: જી બિલકુલ
2: યહ કુપોષણ કા મુખ્ય કારણ હો સકતા હૈ કે પશુ મેં કુપોષણ હો ઉનકો જિતની પોષણ કી આવશ્યકતા હૈ વો નહીં મિલ પા રહા હો જિસકે કારણ યે સમસ્યા હોતી હૈ ઓર ઇસી કે સાથ વિભિન્ન પ્રબંધન સે જુડી સમસ્યાએં
1: જી જી બિલકુલ
2: દૂધ ઉત્પાદન કો પ્રભાવિત કરતી હૈ
1: જી બિલકુલ સર
2: ઇસલિયે દૂધ ઉત્પાદન બઢાને કા સબસે આસાન તરીકા પોષણ સંબંધી આવશ્યકતાઓ ઓર પ્રબંધન પર ધ્યાન દેના હૈ
1: જી બિલકુલ સર આપને સહી કહા ક્યુંકી હમ દેખતે હૈ કે જબ હમ પશુપાલન કરતે હૈ તો ઇન તીનો બાતો કા હમે ધ્યાન રખના બહોત જરૂરી હોતા હૈ ક્યુંકી હમ દેખતે હૈ કે પશુઓ કો અગર સહી પોષણ નહીં મિલેગા रहेगा तो दूध उत्पादन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ उनके रहने की व्यवस्था, साथ ही पारंपरिक जो पशु चिकित्सा है उसका ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से भी पशुओं में होने वाली जो ढेर सारी समस्याएं हैं उससे हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो निजात पा सकते हैं। तो ऐसे में सर, अब हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो पोषण प्रबंधन है वो सही तरीके से हमारे किसान भाई बहन पशुओं के लिए कैसे कर सकते हैं।
2: जी, इस बिंदु पे यदि बात करें कि पोषण प्रबंधन किस तरह से किया जाए, तो हम जो पशुधन को चारा खिला रहे हैं गीला और सूखा, तो इसमें हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि स्थानीय स्तर पर जो भी अलग अलग तरह का चारा हमको उपलब्ध हो पाता है वो पशु को बदल बदल कर खिलाएं। एक तरीका होता है कि चारे को पूरा जिस तरह से खेत से या चारागाह से लाया जा रहा है उसी तरीके से उनको डाल दिया जाता है।
1: जी जी।
2: इसकी बजाय यदि चारे को काटने की जो मशीन आती है जिसको कुट्टी मशीन बोलते हैं और छोटी सी होती है, उससे यदि उसको काट के कुंडी बना के उसमें डाल के खिलाया जाए, तो इससे एक तो आपके चारे के पोषक और बढ़ जाते हैं, दूसरा चारे की बर्बादी कम से कम होती है, यानी कि आप बोल सकते हैं ना के बराबर ही होती है।
1: जी बिल्कुल।
2: और जब अलग अलग तरह का चारा देते हैं तो अलग अलग तरह के चारे में, चाहे सूखा चारा हो चाहे गीला चारा हो, इस तरह से खिलाने से अलग अलग चारे में जो विटामिन प्रोटीन्स होते हैं वो उनको मिल पाते हैं। तो शरीर में जिस भी विटामिन प्रोटीन्स की कमी हो रही है वो अलग अलग तरह का चारा उसकी पूर्ति करता जाता है।
1: जी जी।
2: और एक और चीज इसमें देखी जाए तो जो ज्यादातर पशुधन विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि शाम को दूध दुहने के बाद सूखा चारा खिलाने की वो सलाह देते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: जितना हो सके दिन में यदि हरा चारा खिला सकें वो भी अलग अलग तरह का, तो वो ज्यादा बेहतर होगा।
1: जी हाँ।
2: इसके साथ ही अगर खली खिलाते हैं किसी प्रकार की, तो उसमें भी स्थानीय स्तर पे जो खली उपलब्ध हो सकती है अलग अलग तरह की, उनका इस्तेमाल करें। जैसे कपास की हो सकती है, मूंगफली की हो सकती है, सोयाबीन की हो सकती है, और अन्य भी यदि वहां पे कोई होती है जैसे तिल की हो सकती है, महुआ की हो सकती है।
1: जी जी।
2: तो इस तरह की अलग अलग खलियों का उपयोग करें, जिससे भी उनके शरीर में अनेक प्रकार के पोषण तत्वों की पूर्ति होती रहे।
1: जी बिल्कुल।
2: अब इसके बाद में यदि हम पशुधन को दाने के रूप में अनाज देते हैं, तो जैसे मक्का को आटे के रूप में या भूसी जैसे करके थोड़ा मक्का, उसके साथ में चना मिलाया जा सकता है, धान की भूसी मिलाई जा सकती है।
1: जी जी।
2: तो इनको मिलाकर खिलाने की कोशिश करें, और जब इनको खिलाना है आपको लगभग उसके 12 घंटे या 24 घंटे पहले उसको भिगो दें।
1: जी जी।
2: और उसके बाद यदि पशु को खिलाते हैं तो इससे उसकी पोषण क्षमता बढ़ जाती है या पोषक तत्वों की उसमें मात्रा बढ़ जाती है, और उसको खिलाने से एक तो पशु को उसको पचाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और उसके सारे पोषक तत्वों को जो शरीर है वो अवशोषित कर पाता है।
1: जी बिल्कुल।
2: इसी तरह से कुछ पशुपालक खनिज मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो खनिज मिश्रण यदि उनको उपलब्ध कराए जाते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा।
1: जी हाँ।
2: यदि आप खनिज मिश्रण नहीं देते हैं तो इससे पशु के शरीर में जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे दूध की पैदावार प्रभावित होती है।
1: जी हाँ।
2: और कई बार हम देखते हैं कि शरीर में खनिज तत्वों की कमी के कारण पशु की प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है, तो इसलिए कुछ ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए घर में भी खनिज तत्वों के ईंट वगैरह बनाए जा सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल।
2: जिसके बारे में वाग्धारा संस्था के माध्यम से समय समय पे गांव में इसकी जानकारी दी जाती है कि किस तरह से पोषण ईंट बनाई जाती है, जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से ही बनाई जा सकती है।
1: जी जी बिल्कुल।
2: तो पशुपालक यदि इसको भी बना के इसका उपयोग करते हैं तो आवश्यकता होने पर पशुधन स्वेच्छा से इसका उपयोग करता है।
1: जी जी बिल्कुल।
2: और उन सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति
1: की जा सकती है। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो ये तो हम जान पाए कि किस तरीके से हम पशुओं का पोषण जो है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। यही अब बात ये आती है कि पोषण संबंधी अगर जानकारी हम पूरी तरीके से रख रहे हैं, पशुओं को पोषण दे रहे हैं, और फिर भी अगर दूध उत्पादन जो है वो नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या ऐसे सुझाव है जो हमारे किसान भाई बहनों को अपनाने चाहिए।
2: पहला तो हम यदि बात करें तो हम जैसे कि शुरुआत में तीन बिंदुओं पे बात करना शुरू किए हैं, तो उसमें से एक होता है पशुओं का तनाव
1: जी बिल्कुल,
2: ये आवास से संबंधित भी हो सकता है, उनकी दिनचर्या से संबंधित भी हो सकता है। तो किसान अपने पशु के तनाव के कारणों को ढूंढे और उन्हें दूर करे। अगर एक सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाए तो हर दिन एक जैसी दिनचर्या का पालन करें तो इससे पशुधन में जो तनाव होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है।
1: जी बिल्कुल ना,
2: जैसे गर्मी के दिन है तो पशुधन को दो बार नहलाना संभव हो तो वो नहला दें, जिससे उसके शरीर का तापमान बना रहे। जहां भी हम उनको बांधते हैं या रखते हैं उस जगह की सफाई दिन में दो बार तीन बार कर लें, जिससे वो वहाँ पे साफ सुथरा और बेहतर महसूस करें।
1: जी हाँ।
2: हमारे जानवरों को पीटा या धमकाया ना जाए, इसका असर पशुधन के मस्तिष्क पे होता है। पशु शेड जो हमारा होता है वहाँ कोशिश करें कि साफ सफाई इस तरह की हो, मच्छर ज्यादा ना हो, मक्खियाँ ज्यादा ना हो, जू चीचड़े वहाँ पनप ना पाए।
1: जी बिल्कुल।
2: और इसके साथ ही जो दूध निकालने वाले व्यक्ति हैं, बेहतर होगा कि दूध जो निकालते हैं वही व्यक्ति प्रतिदिन दूध निकाले और जिस समय पे दूध निकालते हैं उसी समय पे दूध निकाले।
1: जी बिल्कुल।
2: इससे भी पशुधन को तनाव हो सकता है और यदि हम नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं और कुछ तनाव के कारक हैं जिनका हम ध्यान रखें, जैसे गर्मी है तो उनको धूप में ना बांधें, सर्दी है तो खुले में ना बांधें, जिससे पशु को तनाव ना हो और उसकी जो दूध उत्पादन क्षमता है वो स्थिर बनी रहे। अब अंतिम बिंदु आता है कि हम बात करते हैं कि स्थानीय स्तर पे जो पशु चिकित्सा के हमारे उपाय थे, परंपरागत उपाय, इनकी जानकारियां हमारे पास कम होती जा रही हैं या लुप्त होती जा रही हैं, जिसके कारण कई बार हम ये समझ नहीं पाते हैं कि पशुधन को क्या समस्या हो रही है।
1: जी बिल्कुल।
2: तो सामान्य रूप से समझ लीजिए कि यदि नियमित रूप से नियमित अंतराल पे हर त्रैमासिक में पशु को कृमि मुक्त करने के लिए हम स्थानीय स्तर पे उपलब्ध दवाइयां खिला दें तो इससे काफी दूध उत्पादन प्रभावित होता है।
1: जी हाँ।
2: तो उसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। पहले भी हमने बात की कि गर्मी है तो धूप में ना बांधे, ठंडी है तो खुले में ना छोड़े।
1: जी जी।
2: हाँ, ये बहुत जरूरी है कि कुछ समय के लिए पशुधन को खुले में छोड़ना जरूरी है। तो मौसम के अनुसार जो समय हमको भी ठीक लगता है कि इस समय हम बाहर निकल सकते हैं, उस समय उनको थोड़ा समय खुले में छोड़ना भी जरूरी है, जिससे उनकी पाचन क्षमता और शारीरिक क्रियाएं सामान्य रहें।
1: जी बिल्कुल।
2: एक खुश पशु अधिक दूध देता है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। और मूल रूप से बकरी, गाय, भैंस, जिनको भी हम दूध उत्पादन के लिए या अन्य जरूरतों के लिए भी पालन कर रहे हैं, उनकी जरूरतों का हम ध्यान रखें।
1: जी हाँ।
2: और उनकी जरूरतों को पूरा करें। जब आप ऐसा करेंगे तो हमारा पशुधन अधिकतम दूध देंगे और साथ में दूध में वसा की मात्रा भी अच्छी होगी, जिससे हमको उस दूध का अधिकतम लाभ मिल पाएगा।
1: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि पशुधन में दूध उत्पादन बढ़ाने के क्या उपाय किए जा सकते हैं और क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से उनके उत्पादन में कमी आती है। तो आशा करते हैं कि हमारे श्रोता साथियों को ये सभी बातें अवश्य पसंद आई होगी। तो सर, अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे पशुपालक जो किसान भाई बहन हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: तो मैं अंत में सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर दूध उत्पादन के लिए आप पशुधन पालन करते हैं तो इन तीन बिंदुओं का हमेशा यदि ध्यान रख के इनका पालन करेंगे
1: जी हाँ।
2: तो आप स्थानीय स्तर की जो वंश हैं उससे मिलने वाले दूध की बराबर मात्रा और गुणवत्ता पूर्ण दूध प्राप्त कर पाएंगे, जिससे कि हमारे परिवार में भी पोषण की पूर्ति हो पाएगी और इससे आर्थिक लाभ भी वो कमा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो सर, जैसा कि कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे ढेर सारी हो गई हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका अमूल्य कीमती समय आपने हमें और हमारे श्रोता साथियों को दिया।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी।
0: जिनके किसान भाई बहन आज अपने स्टूडियो में मनीष जी सर आई बात ने अनंत की बातें आपने रेडियो साथी अंजलि फोन करी रही थी कि पशु दूध उत्पादन आपने हरते बढ़ावी शका ने आनो हूँ महत्व है। जिमकी मनीष जी आपने बताड़ियो कि पशु आवास केवु रेवुज हुए, पशु नु ध्यान आपने हरते राखवुज हुए। अगर पशु नु ध्यान आपने असल तरीका थकी राखांगा તો આપણે જે દૂધની વાત કરે એનું ઉત્પાદન આપણે વધાવી શકંગા. ને અગર જે કે દૂધનું ઉત્પાદન વધી ગયું તો આપણી આ જીવિકા ભી અસલ તરીકા થકી ચાલી જાગા. કેમ કે આપણે દીકશ કે અગર દૂધ વધારે મળ્યું તો આપણે વેચી ભી શકંગા, તો બે પૈસો આપણને મળેગા. એના સાથે આપણને ઘરનું દૂધ ભી પીવા મળેગા અને ઘરનું દૂધ ખાવા મળેગા. આપણે જિંદગી કારે સબ્જી નહીં હોય તો દૂધ આતે ભી આપણે ખાઈ શક. તો આપણને આપણે ધ્યાન દેવું હોય કે પશુઓને દૂધ ઉત્પાદન આપણને હરતે વધાવવું હોય ને જે જે વાતે આપણને મનીષજી સાથે આપણને કરી એ આપણને ધ્યાનમાં રાખવી હે. અને એ પ્રકાર થકી અગર આ વાતે આપણે ધ્યાનમાં રાખંગા તો આપણે દૂધ ઉત્પાદન વધાવી શકંગા ને આપણે પશુનું ધ્યાન ભી રાખી શકંગા. તો હવે આપ દેખી રહો કે તેમ થઈ ગયો હૈ સૂટા પડવાનું. તો સૂટા તો પડ પણ સાથે સાથે સાંભળી લે એક ઓર ગીતને મોરે પડ સૂટા.

किसान भाई बुन अड़स की थाते पड़सूट आशा करा की जेबी वाते रही कार्यक्रम खेती बाड़ी में ये आपने गमी होंगे। आपने हमारो आजनुआ कार्यक्रम केवो लाग्यो एना बारा में आप राय सुझाव आली शको। आपने अना पता माते आपनो पतो है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। आपनो पिनकोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बले आप मने फोन करी शको। आपणे अना फोन नंबर माते आपणो फोन नंबर है 9460051234। तो किसान भाई बुन फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में एक ना विषय ने हाथ दे तारुदी राम राम राम राम।

0: जो चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करे भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी या दस्त में कमी, सांस फूलना इत्यादि एनीमिया के लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर अपने नजदीकी राज्य स्वास्थ्य केंद्रों में एनीमिया की निःशुल्क जांच कराएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। आंगनबाड़ी केंद्रों एवं राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों में एनीमिया उपचार की IFA गोलियां निःशुल्क उपलब्ध हैं।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्र।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है कि नौकरी नहीं अवसर खोजने की सोच को हमें विकसित करना होगा।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कहना चाहेंगे कि क्या सफलता का मतलब केवल नौकरी पाना है, क्या जीवन में आगे बढ़ने का एक ही रास्ता सरकारी या निजी नौकरी है।
0: बिल्कुल
1: आज का दौर बदल रहा है, जो युवा केवल नौकरी की तलाश में है वे सीमित अवसरों में खुद को बांध लेते हैं, जबकि जो युवा अवसरों की तलाश करते हैं वे नए रास्ते बनाते हैं और दूसरों के लिए भी रोजगार के द्वार खोलते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से समझते हैं कि नौकरी खोजने से आगे बढ़कर अवसर खोजने की सोच क्यों और कैसे विकसित करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत के पहले गीत के साथ में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्र के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है, नौकरी नहीं अवसर खोजने की सोच को हमें विकसित करना है।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, हम देखते हैं कि आज देश का हर युवा सफलता चाहता है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा बेटी अच्छी नौकरी पाए, सम्मानजनक जीवन जिए और आर्थिक रूप से मजबूत बने। लेकिन एक सवाल हमें स्वयं से पूछना चाहिए श्रोता साथियों, कि क्या सफलता का अर्थ केवल नौकरी प्राप्त करना है? क्या जीवन की सारी संभावनाएं केवल नौकरी तक ही सीमित है? तो श्रोता साथियों, सच्चाई यह है कि दुनिया तेजी से बदल रही है।
0: बिल्कुल।
1: आज वह व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं जो अवसरों को पहचानना और उनका निर्माण करना जानते हैं। जो केवल नौकरी खोजता है वह सीमित विकल्पों पर निर्भर रहता है, लेकिन जो अवसर खोजते हैं जागृति जी, वह अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के द्वार खोल देते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, आज हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। लाखों युवा एक नौकरी के लिए कितने सारे आवेदन करते हैं, कई बार योग्य होने के बावजूद अवसर नहीं मिल पाता, ऐसे में उनमें निराशा पड़ जाती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, यदि हम नौकरी की बजाय अवसर को खोजने की मानसिकता विकसित करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। अवसर केवल बड़े शहरों में नहीं होते, वे हमारे गाँव में भी होते हैं, कस्बों में होते हैं, आसपास के संसाधनों में छिपे होते हैं। सच्चा स्वराज तभी संभव है जब नागरिक आत्मनिर्भर बनता है और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करता है।
1: जी हाँ जागृति जी, अब यही बात आती है कि नौकरी और अवसर में आखिरकार अंतर क्या है। तो श्रोता साथियों, नौकरी हमें किसी संस्था या संगठन द्वारा दिए गए कार्यों को हम करते हैं, वहीं अवसर हमें स्वयं कुछ नया करने, अपनी प्रतिभा दिखाने और अपनी पहचान बनाने का मौका देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: नौकरी हमें आय देती है, लेकिन अवसर हमें आय के साथ साथ विकास, नेतृत्व और नवाचार का अवसर भी देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है जागृति जी कि नौकरी बुरी है। नौकरी महत्वपूर्ण है, लेकिन सोच केवल नौकरी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम समाज की किस समस्या का समाधान कैसे बनकर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज डिजिटल युग है और

0: इंटरनेट ने दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल दिया है। आज कोई व्यक्ति अपने घर से ही ऑनलाइन सेवाएं दे सकता है, अपना व्यवसाय चला सकता है और देश विदेश के ग्राहकों तक पहुंचा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि खेती, डेयरी, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती, हस्तशिल्प, पर्यटन, डिजिटल सेवाएं, ऑनलाइन शिक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, कंटेंट निर्माण, ई कॉमर्स, ये सारे अनेक क्षेत्र नए अवसरों से भरे हुए हैं। और जो भी युवा, जो भी श्रोता साथी समय की मांग को समझता है वो भविष्य का नेतृत्व करता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज केवल डिग्री प्राप्त करना ही जरूरी नहीं है, यदि डिग्री के साथ कौशल भी हो तभी सफलता की संभावना बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल,
1: कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग, संचार कौशल, तकनीकी ज्ञान, वित्तीय प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता और समस्या समाधान जैसे कौशल व्यक्ति को अवसरों के करीब ले जाते हैं। श्रोता साथियों, सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, जो सीखना बंद कर देते हैं उनकी प्रगति रुक जाती है। देखते हैं जागृति जी कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक स्थिति ही नहीं है बल्कि यह एक मानसिकता है।
0: बिल्कुल,
1: आत्मनिर्भर व्यक्ति समस्याओं के सामने हार नहीं मानता बल्कि समाधान खोजता है। जब युवा स्वयं के पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है श्रोता साथियों, तब वह परिवार, समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा होगा जब युवा अवसरों की तलाश करेंगे और अपने सपनों को साकार करने का साहस दिखाएंगे।
0: बिल्कुल अंजलि, इसलिए कहा भी गया है कि आत्मनिर्भरता की राह अगर हम अपनाएंगे तो उज्जवल भविष्य हम स्वयं बना सकते हैं। श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें तो चल रही है, हम जान पा रहे हैं कि नौकरी नहीं, हमें अवसरों को खोजना है। तो ये बातें निरंतर आज के इस कार्यक्रम में बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हमने जाना कि आत्मनिर्भरता की ओर कदम हमें कैसे बढ़ाने की जरूरत है,
1: बिल्कुल
0: यही अब बात आती है कि स्थानीय संसाधनों में कई सारी संभावनाएं छुपी होती हैं, जैसे कि हमारे गांवों में असीम संभावनाएं मौजूद हैं। खेती उत्पादों का प्रसंस्करण, डेयरी उद्योग, बागवानी, मत्स्य पालन, कुटीर उद्योग, स्थानीय कला कौशल अनेक अवसर प्रदान करते हैं। अक्सर लोग अवसरों की तलाश में दूर चले जाते हैं, जबकि कई अवसर उनके आसपास ही मौजूद है।
1: हाँ।
0: आवश्यकता केवल श्रोता साथियों उन्हें पहचानने की और सही दिशा में प्रयास करने की होती है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि हर समस्या हमारे भीतर एक अवसर छिपा कर रखती है। जहाँ समस्या होती है वही समाधान की भी आवश्यकता होती है। श्रोता साथियों, यदि किसी क्षेत्र में पानी की समस्या है तो जल संरक्षण के क्षेत्र में अवसर है। यदि किसानों को बाजार नहीं मिल रहा है तो कृषि विपणन में अवसर है। यदि शिक्षा की कमी है तो शिक्षा सेवाओं में अवसर है। जो व्यक्ति समस्याओं को अवसर में बदलना सीख जाता है अंजलि, वही समाज का नेतृत्व करता है। उद्यमिता केवल व्यवसाय नहीं है श्रोताओं, बल्कि एक सोच है। उद्यमी जोखिम उठाता है, नवाचार करता है और समाज के मूल्यों का निर्माण करता है।
0: बिल्कुल,
1: एक छोटा उद्यम भी कई लोगों को रोजगार दे सकता है। आज देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने।
0: बिल्कुल जागृति जी, अवसर खोजने की राह आसान नहीं होती है। चुनौतियाँ कई सारी आती है, असफलताएं भी मिलती है, लेकिन यही अनुभव भविष्य की सफलता की नींव बनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: महान सफलताओं के पीछे कई संघर्ष छिपे होते हैं। जो व्यक्ति गिरकर फिर उठता है वही अंत में मंजिल तक पहुंचता है। असफलता अंत नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि सीखने का अवसर है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हार नहीं सीख का नाम है असफलता, आगे बढ़ना ही है सफलता।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि जब युवा अवसरों की पहचान करना सीखते हैं तब उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। वे केवल अपने लिए नहीं सोचते बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी अपना योगदान देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो नई सोच, नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़े। कहा भी गया है कि अगर युवा जागेंगे तो देश बढ़ेगा और नए विचारों से भविष्य नया बनेगा।
0: जी हाँ जागृति जी, सरकार द्वारा स्वरोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब नागरिक जागरूक होंगे। जानकारी भी एक शक्ति है, अवसर तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, सच्चा स्वराज केवल शासन व्यवस्था का विषय नहीं है। इसका अर्थ है ऐसा समाज जहां लोग आत्मनिर्भर हो, जागरूक हो और अपने विकास की जिम्मेदारी स्वयं उठाएं।
1: बिल्कुल,
0: जब युवा अवसरों का निर्माण करते हैं जागृति जी, तब गांव मजबूत होते हैं। गांव मजबूत होते हैं तो राष्ट्र मजबूत होता है और यही सच्चे स्वराज की भावना है। स्वराज का अर्थ केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। अवसरों की खोज उसी जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, जीवन में अगर आपको नौकरी मिल रही है तो आप उसका सम्मान कीजिए, लेकिन अपने सपनों को केवल नौकरी तक सीमित मत रखिए। अपने भीतर छिपी प्रतिभाओं को पहचानिए, नए अवसरों को खोजिए, चुनौतियों को स्वीकार कीजिए और अपने जीवन का मार्ग स्वयं बनाइए। याद रखिए, दुनिया में परिवर्तन हमेशा उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने अवसरों का इंतजार नहीं किया बल्कि अवसरों का निर्माण किया। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि हम केवल नौकरी तलाशने वाले युवा नहीं बने बल्कि अवसर खोजने और अवसर पैदा करने वाले जागरूक नागरिक भी बने। यही आत्मनिर्भर भारत की राह है, यही युवा शक्ति का सम्मान है और यही सच्चे स्वराज की सच्ची पहचान है।
0: बिल्कुल,
1: कहा गया अंजलि कि नौकरी नहीं बल्कि हमें अवसरों को पहचानना है, स्वावलंबी भारत की नई उड़ान बनना है, खुद भी बढ़ना है और औरों को भी बढ़ाना है, साथ ही सच्चे स्वराज का सपना भी साकार करना है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि नौकरी नहीं हमें अवसर खोजने की सोच को विकसित करना है। ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके क्या फायदे हैं और किस तरीके से हमारे जो श्रोता साथी हैं उन्हें जागरूक होने की जरूरत है, इन ढेर सारी बातों को हम कार्यक्रम के माध्यम से जान पाए।
1: बिल्कुल,
0: आशा करते हैं कि ये सभी बातें उन्हें अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे, पर अंत में आपसे ये कहना चाहेंगे कि आज की चर्चा का सार केवल इतना नहीं है कि नौकरी छोड़कर व्यवसाय शुरू कर दिया जाए, बल्कि ये है कि हम अपनी सोच को सीमित न रखें। जीवन में नौकरी करना भी सम्मानजनक है, लेकिन केवल नौकरी को ही सफलता का एकमात्र रास्ता मान लेना हमारी संभावनाओं को छोटा कर देता है।
1: बिल्कुल,
0: सच्ची सफलता तब मिलती है अंजलि जब हम अपनी प्रतिभा, अपने कौशल और अपने आसपास मौजूद अवसरों को पहचानते हैं और उनका उपयोग समाज तथा राष्ट्र के विकास के लिए करते हैं। याद रखिए, अवसर कभी आसमान से नहीं टपकते श्रोताओं, अवसर उन लोगों को दिखाई देते हैं जो जागरूक होते हैं, जो सीखने के लिए तैयार होते हैं, जो कठिनाइयों से घबराते नहीं और जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। जो युवा केवल नौकरी की प्रतीक्षा करता है वह अवसर आने का इंतजार करता रहता है, लेकिन जो युवा अवसरों की खोज करता है वह अपनी मेहनत और लगन से नए रास्ते बनाता है। इसलिए श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि सच्चा स्वराज तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक एक महसूस करे कि उसके विकास की जिम्मेदारी भी उसी की है, जब युवा आत्मनिर्भर बनेंगे, जब वे समस्याओं को अवसर में बदलेंगे, जब वे अपने गांव, अपने समाज और अपने देश के लिए कुछ नया करने का संकल्प लेंगे, तब भारत केवल विकसित राष्ट्र ही नहीं बनेगा बल्कि दुनिया के लिए प्रेरणा का केंद्र भी बनेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, जिस दिन हमारे युवा साथी अवसरों को पहचानना सीख जाएंगे उसी दिन आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी, और जिस दिन पूरा समाज अवसरों का निर्माण करना सीख जाता है उसी दिन राष्ट्र की तकदीर भी बदल जाती है।
1: बिल्कुल। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथ ही आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

जो चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी या दस्त में कमी, सांस फूलना इत्यादि एनीमिया के लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर अपने नजदीकी राज्य स्वास्थ्य केंद्रों में एनीमिया की निःशुल्क जांच कराएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। आंगनबाड़ी केंद्रों एवं राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों में एनीमिया उपचार की IFA गोलियां निःशुल्क।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषय की।
0: जी
1: आज का विषय है मोबाइल और बढ़ते स्क्रीन टाइम का स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर। हम देखते हैं कि मोबाइल फोन आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
0: बिल्कुल,
1: पढ़ाई हो, काम हो, मनोरंजन हो या फिर किसी से संपर्क करना हो, मोबाइल हर जगह हमारे साथ है।
0: जी
1: लेकिन क्या श्रोता साथियों, आपने कभी सोचा है जिस मोबाइल ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है वही हमारे सेहत के लिए धीरे धीरे एक चुनौती बनता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: आज बच्चे हो या बड़े, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक घंटों मोबाइल स्क्रीन पर नजरें टिकाए रखते हैं। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और ऑनलाइन गतिविधियों ने मनीषा स्क्रीन टाइम को इतना बढ़ा दिया है कि इसका असर अब हमारे शरीर, दिमाग और सामाजिक जीवन पर साफ दिखाई देने लगा है। आज कार्यक्रम में हम विस्तार से यही जानेंगे कि मोबाइल और बढ़ते स्क्रीन टाइम ने किस तरीके से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा की है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम के पहले गीत के साथ मनोरंजन करवा दी हम।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल और स्क्रीन टाइम का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन, टेबलेट, कंप्यूटर और अन्य स्क्रीन आधारित उपकरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। शिक्षा, मनोरंजन, संचार, बैंकिंग, खरीदारी, कार्यालय के अधिकांश कार्य हम मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से ही करने लगे हैं। तकनीकी ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है साथियों, लेकिन इसके अधिक उपयोग ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी जन्म दिया है।
1: बिल्कुल,
0: वर्तमान समय में बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग स्क्रीन के सामने पहले की तुलना में अधिक समय बिताने लगे हैं।
1: हाँ।
0: श्रोता साथियों, यही कारण है कि स्क्रीन टाइम आज की एक महत्वपूर्ण समस्या बन चुका है।
1: बिल्कुल, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्क्रीन टाइम का अर्थ है वह समय जो हम मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप या किसी भी डिजिटल स्क्रीन के सामने बिताते हैं।
0: जी हाँ,
1: जब यह समय जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो यह हमारे स्वास्थ्य, व्यवहार और दिनचर्या को प्रभावित करने लगता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जरूरत और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन आज स्थिति यह है कि कई लोग प्रतिदिन 5 से 8 घंटे या उससे भी अधिक समय मोबाइल पर बिताते हैं। हम देखते हैं कि बढ़ते स्क्रीन टाइम के कई कारण हैं, जैसे कि सोशल मीडिया का आकर्षण। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म लोगों को लंबे समय तक स्क्रीन से जोड़े रखते हैं। डिजिटल शिक्षा और वर्क फ्रॉम होम की वजह से स्क्रीन का उपयोग बढ़ा है। बच्चे और युवा घंटों गेम खेलने में समय बिताते हैं। पहले लोग मैदानों में खेलते थे, परिवार के साथ समय बिताते थे, लेकिन अब मनोरंजन का हिस्सा मोबाइल तक सिमट गया है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से स्क्रीन टाइम बढ़ गया है।
0: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि मोबाइल और स्क्रीन टाइम का सबसे अधिक प्रभाव हमारी आंखों पर पड़ता है। लगातार स्क्रीन टाइम देखने से आंखों को आराम नहीं मिल पाता साथियों।
1: बिल्कुल,
0: इसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि आंखों की थकान। हम देखते हैं कि लंबे समय तक मोबाइल देखने से आंखों की मांसपेशियां हैं वो थक जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे आंखों में भारीपन और असुविधा महसूस होने लगती है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि इससे हमारे आंखों में सूखापन है वो भी बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: जब हम स्क्रीन देखते हैं तो सामान्य से कम बार हमारी पलकें झपकती हैं, इससे आंखों की नमी कम होने लगती है साथियों, और आंखों में सूखापन आने लगता है।
1: जी हाँ मनीषा, और इसका प्रभाव हमारी नींद पर पड़ता है।
0: जी हाँ,
1: रात को सोने से पहले मोबाइल चलाना आज आम बात हो गई है। मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी शरीर में नींद लाने वाले हार्मोन्स मेलाटोनिन के निर्माण को प्रभावित करती है। इसके कारण हम देखते हैं कि नींद देर से आती है, नींद पूरी नहीं होती, बार बार नींद टूटती रहती है, सुबह थकान महसूस होती है। श्रोता साथियों, लगातार खराब नींद से शरीर की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है।
0: जी हाँ,
1: इसी के साथ इसका मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं मनीषा कि अधिक स्क्रीन टाइम केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी प्रभावित करता है।
0: जी हाँ,
1: तनाव और चिंता की बात करें तो सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देख कर कई लोग स्वयं की तुलना करने लगते हैं।
0: जी हाँ,
1: तनाव और चिंता बढ़ सकती है। इसी के साथ मोबाइल से दूर होने पर बेचैनी या गुस्सा आना डिजिटल निर्भरता का संकेत हो सकता है। लगातार बदलती जानकारी और वीडियो देखने की आदत ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी कम कर सकती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से मोबाइल और स्क्रीन टाइम का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसे लेकर बातें चल ही रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर, कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि बढ़ते स्क्रीन टाइम के क्या कारण हैं, साथ ही आंखों पर और नींद पर क्या प्रभाव पड़ता है और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
1: जी हाँ।
0: अब यही बात करें बच्चों पर विशेष क्या प्रभाव पड़ता है। तो श्रोता साथियों, बच्चों में अधिक स्क्रीन टाइम कई समस्या पैदा कर सकता है। बच्चे बाहर खेलने के बजाय मोबाइल पर समय बिताने लगते हैं। जरूरत से ज्यादा स्क्रीन बच्चों की एकाग्रता और याददाश्त को प्रभावित कर सकती है।
1: जी हाँ।
0: मोबाइल के कारण बच्चों का लोगों से सीधा संवाद कम होने लगता है। कहना चाहेंगे मनीषा श्रोता साथियों से कि मोबाइल देखते समय अधिकांश लोग गर्दन झुकाकर बैठते हैं। इससे गर्दन दर्द, कंधों में दर्द, पीठ दर्द और शरीर की गलत मुद्रा हो जाती है। ऐसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए आजकल कम उम्र में लोगों में ये सारी जो समस्याएं हैं वो तेजी से देखने को मिल रही है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि गलत बैठने की आदत है वो भी ज्यादा बढ़ रही है। स्क्रीन के सामने घंटों बैठने से शरीर की मुद्रा प्रभावित होती है, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। साथ ही हम देखते हैं कि मोटापे का खतरा भी बढ़ जाता है। जो लोग अधिक समय मोबाइल या कंप्यूटर पर बिताते हैं साथियों, वे कम शारीरिक गतिविधियां करते हैं।
0: जी जी।
1: इससे हम देखते हैं कि वजन बढ़ने लगता है और मोटापे का जोखिम है वो बढ़ने लगता है। साथ ही यही बात करें अगर मांसपेशियों की जकड़न की, तो हम देखते हैं कि एक स्थिति में लंबे समय तक बैठे रहने से शरीर की मांसपेशियां हैं वो भी जकड़ जाती है और दर्द होने लगता है। श्रोता साथियों, जब व्यक्ति लंबे समय तक बैठा रहता है और शारीरिक गतिविधियां कम करता है तो उसका प्रभाव हृदय स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। निष्क्रिय जीवन शैली, मोटापा, उच्च रक्तचाप, अन्य स्वास्थ्य जोखिम है वो बढ़ सकते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, स्क्रीन टाइम के साथ नियमित शारीरिक गतिविधियां भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं।
0: जी हाँ मनीषा, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि परिवार को भी प्रभावित करता है।
1: जी बिल्कुल।
0: कई बार परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर भी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इससे बातचीत कम होती है, भावनात्मक जुड़ाव घटता है और रिश्तों में पड़ सकती है। इसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्क्रीन टाइम को कम करने के कुछ उपाय हैं जो हमें अपनाने हैं। इसके लिए हमें मोबाइल का उपयोग निश्चित समय निर्धारित करना होगा कि हम उसी समय पर मोबाइल को हाथ लगाएं। सोने से कम एक घंटा पहले स्क्रीन का उपयोग बंद करना है। मोबाइल की जगह बातचीत, खेल और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। शारीरिक गतिविधियां स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो हमें उनको प्रेरित करना है और हमारे बच्चों को सिखाना है कि जो परंपरागत खेल थे वो किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर 20 से 30 मिनट बाद कुछ देर आंखों को और शरीर को हमें आराम देने की जरूरत है। भोजन के समय और परिवार के साथ बैठते समय मोबाइल का उपयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है।
1: जी
0: ये
1: हाँ।
0: कुछ ऐसे सामान्य आदत हैं जिसके माध्यम से हम परिवर्तन ला सकते हैं। इसी के साथ कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि मोबाइल तकनीक का एक अद्भुत साधन है। ये ज्ञान, संपर्क और सुविधाओं का विशाल संसार हमारे हाथों तक पहुंचाता है, लेकिन हर सुविधा तभी लाभदायक होती है मनीषा, जब उसका उपयोग संतुलित तरीके से किया जाए। समस्या मोबाइल में नहीं बल्कि उसके अनियंत्रित उपयोग में है। आज आवश्यकता इस बात की है श्रोता साथियों कि हम तकनीक के मालिक बने, उसके गुलाम नहीं। यदि हम अपने बच्चों को खुला

0: आकाश, खेल का मैदान, परिवार का साथ और किताबों की दुनिया देंगे तो उसका विकास अधिक संतुलित होगा। यदि हम स्वयं भी स्क्रीन और वास्तविक जीवन के बीच संतुलन बनाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य, रिश्ते और मानसिक शांति तभी बेहतर होगी। याद रखिए कि जीवन की सबसे सुंदर तस्वीर किसी मोबाइल स्क्रीन पर नहीं बल्कि हमारे आसपास मौजूद वास्तविक दुनिया में है। इसलिए तकनीक का उपयोग करें लेकिन अपने स्वास्थ्य, परिवार और खुशियों की कीमत पर नहीं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगी कि मोबाइल और स्क्रीन टाइम आधुनिक जीवन की आवश्यकता बन चुके हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आंखों की समस्या, नींद में बाधा, मानसिक तनाव, गर्दन और पेट दर्द, मोटापा और साथ ही सामाजिक दूरी जैसी अनेक समस्याएं अत्यधिक बढ़ती जा रही हैं।
0: जी जी।
1: विशेष रूप से हम देखते हैं कि बच्चों और युवाओं को इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। स्वस्थ जीवन के लिए तकनीकी और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। श्रोता साथियों, यदि हम मोबाइल और स्क्रीन का विवेकपूर्ण उपयोग करें, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त पानी लें और वास्तविक जीवन में संबंधों को महत्व दें तो श्रोता साथियों हम डिजिटल युग से भी बेहतर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यही स्वस्थ और संतुलित जीवन की पहचान है।
0: याद रखना होगा कि स्वस्थ आंखें, शांत मन, अच्छी नींद और मजबूत रिश्ते किसी भी मोबाइल से ज्यादा कीमती है। तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए है, जीवन का स्थान लेने के लिए नहीं। जिसे सकारात्मक सोच के साथ अपने स्क्रीन टाइम पर ध्यान दें, एक स्वस्थ, संतुलित और खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले मनोरंजन कर लें एक और गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रहीं, गीत संगीत रहीं, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम रोजाना कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर एक नए विषय के साथ हाजिर होते हैं, तो आज भी कार्यक्रम में एक नए विषय को लेकर मैं आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ। दोस्तों, आज हम जिस विषय को लेकर कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं वो हर उस इंसान के दिल से जुड़ा हुआ है जिसने कभी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखा होगा। जी हाँ साथियों, विषय है सफल लोग किस तरह सोचते हैं। दोस्तों, अक्सर हम किसी सफल व्यक्ति को देखकर कहते हैं इनकी किस्मत कितनी अच्छी थी, इनके पास मौके थे, इनके पास पैसा था, इनके पास सहारा था। लेकिन साथियों, सच तो यह है कि सफलता सबसे पहले इंसान के दिमाग में जन्म लेती है, फिर सोच बदलती है, फिर आदतें बदलती हैं और फिर जिंदगी ही बदल जाती है। साथियों, तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर मेरी आपसे ढेर सारी बातें होंगी। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो पहले मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में दोस्तों, फिर हमारी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसे कि दोस्तों, विषय के बारे में मैं आपको गीत से पहले बता चुकी हूँ कि हम बात कर रहे हैं कि सफल लोग किस तरह सोचते हैं। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि अक्सर हम सफल लोगों को देखकर ये कहते हैं कि इसके पास तो पैसा था इसलिए सफल हुआ, इसके पास सहारा था इसलिए सफल हुआ, या फिर इसको तो मौके बहुत सारे मिले थे। लेकिन दोस्तों, सफलता किसी इंसान की किस्मत को देखकर, सहारे को देखकर या फिर पैसे को देखकर नहीं आती है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि सफल लोग हमसे अलग नहीं होते, उनके पास भी दिन के वही 24 घंटे होते हैं, वही मुश्किलें होती हैं और वही संघर्ष होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का होता है साथियों कि वे परिस्थितियों को एक अलग तरीके से देखते हैं, या फिर कहूँ कि वो अपनी परिस्थितियों को देखने का तरीका ही बदल लेते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि सफल लोग आखिर किस तरह सोचते हैं, किस तरीके की आदतें अपनाते हैं और मुश्किल समय में वे खुद को कैसे संभालते हैं, साथ ही क्यों उनकी सोच भीड़ से अलग होती है। साथियों, तो अब यही जानते हैं साथियों कि सफल लोग समस्याओं से नहीं समाधान से जुड़ते हैं। आपको बताऊं दोस्तों, तो जीवन में परेशानी हर किसी के पास है। किसी के पास पैसों की समस्या है, किसी के पास समय की कमी है, किसी के पास अवसरों की, तो किसी के पास आत्मविश्वास की। लेकिन दोस्तों, सफल लोग हर समय ये नहीं कहते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वे ये सोचते हैं कि अब इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, और यही सोच श्रोता साथियों उन्हें आगे बढ़ाती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का काम बंद हो गया है, एक इंसान बैठकर रोता रहेगा कि जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन सफल सोच वाला इंसान कहेगा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अब मुझे कुछ नया रास्ता खोजना होगा। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि सफल लोग समस्या को अंत नहीं मानते, बल्कि एक नई शुरुआत करने का अवसर मानते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, सफल लोग हमेशा सफल होते रहते हैं, और जो एक मामूली इंसान होता है जो समस्या को देखकर निराश हो जाता है, वो बैठा का बैठा ही रह जाता है। साथ ही आपको बताऊं दोस्तों, तो सफल लोग असफलता से भी नहीं डरते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि असफलता हर बड़े इंसान की कहानी का हिस्सा रही है। कोई भी इंसान बिना गिरने के चलना नहीं सीखता दोस्तों। लेकिन फर्क यहाँ ये आता है कि कुछ लोग एक हार के बाद रुक जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसी हार से सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। दोस्तों, सफल लोग जो होते हैं वो असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देते। वे कहते हैं कि मैं हारा जरूर हूँ, लेकिन खत्म नहीं हुआ हूँ, मैं फिर से कोशिश करूंगा। यही सोच श्रोता साथियों उन्हें दोबारा खड़ी करती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो इस कार्यक्रम को सुन रहे युवा साथियों, आपसे मैं यही कहना चाहूंगी कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती से कुछ नहीं सीखना जरूर गलत है। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम में मेरी आपसे बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं साथियों एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में, और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, सफल लोगों की पहचान आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कर रहे हैं और वे सफल होने के लिए किस तरीके की सोच रखते हैं ये भी हम जान रहे हैं। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि सफल लोग समस्याओं से नहीं डरते बल्कि समाधान से जुड़ते हैं। सफल लोग असफलता से भी नहीं डरते हैं। अब यही अगर आपको बताएं श्रोता साथियों, तो सफल लोग जो होते हैं वो बड़े सपने देखने से भी नहीं डरते। यानी कि हमने देखा है कि बहुत से लोग अपने सपनों को इसलिए छोटा कर लेते हैं क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन श्रोता साथियों, सफल लोग दूसरों की हंसी से नहीं डरते क्योंकि वे ये जानते हैं कि लोग सफल होने पर भी उनका मजाक उड़ाएंगे और असफल होने पर भी उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सफल लोग ये भी जानते हैं कि जो लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन वही लोग तालियां भी बजाएंगे। साथियों, सफल लोग अपनी परिस्थितियों से बड़े सपने देखते हैं। यानी कि गरीबी हो सकती है, संसाधन कम हो सकते हैं, मदद करने वाला कोई नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों, अगर सोच बड़ी है तो इंसान रास्ता बना ही लेता है, ऐसी सोच वे रखते हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि समय दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। ऐसे में सफल लोग समय को खर्च नहीं करते बल्कि समय का निवेश करते हैं। जब बाकी लोग दोस्तों सिर्फ शिकायतों में समय बिताते हैं, तब सफल लोग सीखने में, मेहनत करने में और खुद को बेहतर बनाने में समय लगाते हैं। इसी कारण से धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगती है और वे आगे ही बढ़ते जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, सफल लोग कभी ये नहीं सोचते कि अब मुझे सब कुछ आ गया है। वे हमेशा सीखते रहते हैं नई बातें, नए अनुभव और नई तकनीक। वे खुद को लगातार श्रोता साथियों बेहतर बनाते रहते हैं क्योंकि वे ये जानते हैं कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी तरक्की भी रुक जाती है। तो दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगी कि किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों को सुनना और अनुभवों से सीखना, ये सब सफलता की सीढ़ियां है। और इस बात को सफल लोग अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि जब पूरी दुनिया आपको कमजोर समझती है, तब भी श्रोता साथियों, अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो यही भरोसा आपको जीत तक ले जाएगा। सफल लोग हर समय दूसरों की मंजूरी का इंतजार नहीं करते बल्कि वे अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। कई बार रास्ता मुश्किल होता है साथियों, कोई साथ हमारा नहीं देता है, लोग बातें भी बनाते हैं, लेकिन सफल लोग अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाते क्योंकि वे जानते हैं कि अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगा तो दुनिया क्यों ही करेगी। इसलिए श्रोता साथियों, सफल होने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। तो साथियों, कहना चाहूंगी कि सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वे बस अलग तरीके से सोचते हैं। वे हार में भी सीख देखते हैं, समस्या में भी अवसर को देखते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर दोस्तों हम भी अपनी सोच बदल लें तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। याद रखिए, सफलता पहले सोच में आती है, फिर जीवन में। इसी उम्मीद और सकारात्मक संदेश के साथ दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। अंत में आपसे यही कहूंगी कि अपने सपनों को छोटा मत होने दीजिए, मेहनत करिए, सीखते रहिए और उड़ान भरते रहिए, क्योंकि दोस्तों, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें सच करने की हिम्मत रखते हैं। जी हाँ साथियों, इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। जाते जाते आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में, तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही और गीत संगीत रहे वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी मेरी आपसे अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए प्रेरणादायक विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे ही जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने कने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरो ने हाथे मलीने जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को
4: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं ये सुरक्षा है सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं
3: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी महिलाओं के भूमि अधिकार क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित जो चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है जल्दी थकान होना शारीरिक कमजोरी या दस्त में कमी सांस फूलना इत्यादि एनीमिया के लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर अपने नजदीकी राज्य स्वास्थ्य केंद्रों में एनीमिया की निःशुल्क जांच कराएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें आंगनबाड़ी केंद्रों एवं राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों में एनीमिया उपचार की IFA गोलियां निःशुल्क उपलब्ध हैं।
5: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जो चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करे भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी या दस्त में कमी, सांस फूलना इत्यादि एनीमिया के लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर अपने नजदीकी राज्य स्वास्थ्य केंद्रों में एनीमिया की निःशुल्क जांच कराएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। आंगनबाड़ी केंद्रों एवं राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों में एनीमिया उपचार की IFA गोलियां निःशुल्क उपलब्ध हैं।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

ये गजल मैंने मेरे से बहुत दिनों में इसकी धुन बनी मैं पेश कर रहा हूँ। ये मोमिन खा मोमिन की गजल है जिसका मतलब है रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह।